0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

Thank you.

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: घर ही मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल फ्लक के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल और पॉम्फ्लेमोसिस के सर शिवसागर राम गुलाम अस्पताल तथा थ्रियोले और फ्लोरियाल की मेडिक्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यू कोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। सरकार देश की बायो सिक्योरिटी के लिए संभावित खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल 1 जुलाई को जारी कम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज अपेक्स LSS सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक हफ्ता हुआ है जब से न्यू वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है वहीं इनमें से जिंदा लोगों को निकालने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश हो सकती है और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती हैं। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:46 पर सूर्योदय, शाम को 5:41 पर सूर्यास्त होगा।
1: RM3 Radio.

सदकल्लाहु अज़ीम। मज़ीद सामीन, अभी आपने कुरान पाक की चंद आयात मुबारका की तिलावत समाअत की। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वह हमें इन आयतों के सुनने का अजर सवाब अता करे और हमें सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे, आमीन। पेश खिदमत है एक हमद, आइए समाअत करते हैं।

बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों के जिस्मों में होती हैं, वो जन्नत में जहाँ चाहती हैं सैर करती हैं, अर्श के साथ लटकी हुई सोने की किंडीलों में रहती हैं, अल्लाह ताला उनकी तरफ ख़ास नज़र फरमाता है और पूछता है, क्या तुम किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हो? वो अर्ज़ करते हैं, हमारे लिए इससे बढ़कर क्या नियमत होगी कि हम जन्नत में जहाँ चाहें घूमते फिरते हैं। फिर जब बार बार सवाल किया जाता है तो वो अर्ज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी रूहों को दोबारा हमारे जिस्मों में लौटा दिया जाए ताकि हम फिर तेरी राह में शहीद

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जो जन्नत में दाखिल

दाखिल हो जाए वो दुनिया की तरफ वापस आना पसंद नहीं करेगा। अगरचे उसे पूरी दुनिया और उसकी तमाम नियमतें दे दी जाएं सिवाय शहीद के, वो इस वजह से दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा कि वो अल्लाह ताला की राह में 10 मरतबा शहीद किया जाए, क्योंकि उसने शहादत की अजीम फजीलत और इज्जत को देख लिया होता है। इस हदीस से मालूम होता है कि शुहदा का मर्तबा इस कदर बुलंद है कि वो जन्नत की बेशुमार नियमतों के बावजूद दोबारा अल्लाह ताला की राह में जान कुर्बान करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये शहादत की अजीम फजीलत अल्लाह ताला की रज़ा और अबदी कामयाबी की वाज़ेह दलील है।

सामीन, शुहदा की ज़िंदगियां हमें ईमान, इखलास और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने का सबक देती हैं। अगरचे हर शख्स को शहादत नसीब नहीं होती, लेकिन हर मुसलमान को चाहिए कि अपने दिल में शहादत की सच्ची तमन्ना रखे और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक गुजारे। हमें दीन की खिदमत, हक बात कहने, मज़लूम की मदद करने और नेकी के रास्ते पर साबित कदम रहने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, जबकि आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने आमाल को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खालिस कर लेते हैं। आएँ हम सब ये अहद करें कि अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि अल्लाह ताला हमें भी अपने नेक बंदों और शुहदा के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, सबल खैर प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए।

0: Sundaram.
1: Your music, your request.

You're listening to RM3 Radio Mana.

94.96, 98.2, आप सुन रहे हैं ORM3।

ओम श्री गणेशाय नमः। सादर प्रणाम श्रोताओं, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ दीविना और आप सुन रहे हैं MBC रेडियो, मनोरंजन का श्रद्धा भक्ति तथा आत्मिक शांति से भरपूर कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। ईश्वर करे आपका यह गुरुवार सुख शांति उत्तम स्वास्थ्य तथा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। आइए कुछ पल के लिए संसार की भागदौड़ से दूर होकर प्रभु के चरणों में मन को अर्पित करें। जब मन में भक्ति का दीप जलता है तब जीवन का हर अंधकार स्वयं दूर होने लगता है। वैसे कहते हैं, जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय नहीं होता, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं।

श्री राम जय राम जय जय राम। श्रोताओ, राम नाम वह अमृत है जो दुखी मन को भी मुस्कान देना सिखा देता है। तो चलते हैं अगले भजन की ओर, श्री राम जी की आराधना करते हैं।

श्रोताओं, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सफलता कभी परीक्षा, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता हो उसके भीतर धैर्य तथा साहस बना रहता है। कहा भी गया है, मन मंदिर में दीप जलाओ, हर पल प्रभु का नाम सुनाओ, दुख की रात स्वयं ढल जाएगी, भक्ति की किरण जब मुस्कुराएगी।

आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। आपका फिर से अभिवादन करते हैं श्रोताओं। एक संत से किसी ने पूछा, भगवान कहाँ मिलते हैं? संत मुस्कुराए तथा बोले, भगवान मंदिरों में अवश्य है, परंतु सबसे पहले वे उस हृदय में मिलते हैं जहाँ प्रेम, करुणा, क्षमा तथा सेवा का भाव हो। यही सच्ची भक्ति है। केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी ईश्वर के गुणों को अपनाना चाहिए।

राह कठिन हो, मंजिल दूर हो, फिर भी हिम्मत मत हारना। जिसके सिर पर प्रभु का हाथ हो, उसे जीवन में कभी न हारना। हर सुबह प्रभु का नाम लिया करो, हर शाम उसका धन्यवाद किया करो। जीवन सुंदर लगने लगेगी, बस विश्वास का दीप जलाया करो।

श्रोताओं, कहते हैं भक्ति केवल आरती या भजन तक सीमित नहीं है, माता पिता का सम्मान करना भी भक्ति है, दुखों की मदद करना भी भक्ति है, मीठा बोलना भी भक्ति है, प्रकृति की रक्षा करना भी ईश्वर की सेवा है। जब हमारा हर कर्म

कर्म प्रेम तथा निस्वार्थ भाव से होता है तभी जीवन में सच्ची भक्ति की शक्ति प्रकट होती है। तो इसी के साथ भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आपसे अनुमति चाहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति प्रेम स्वास्थ्य का प्रकाश बनाए रखें। आपका हर दिन मंगलमय हो और हर कदम पर प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ रहे। अब लेते हैं आपसे विदा इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमन।

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: बारह बजे हैं। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे रजनी। नमस्कार आपको।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का
1: स्वागत करते हैं। स्थानीय स्तर पर आज सुबह 6:30 रोजिल में एक हिट एंड रन का मामला पेश आया। पुलिस सक्रिय रूप से एक चालक को ढूंढ रही है जिसने फिजा रोजानी को टक्कर मारकर भाग गया। अब तक वाहन के बारे में पता नहीं चला है। 57 वर्षीय पुरुष रोजिल का रहने वाला है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कैपर ही जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक मोजाम्बिक के पशुओं को लेकर निकाला जहाज एपेक्स LSS सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई है इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। अगले 6-9 दिसंबर के बीच पाए के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट लगेगा। इसका आयोजन मॉरिशन सरकार और कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की मिलीजुली पहल पर किया जाएगा। सम्मेलन में कई अफ्रीकी राष्ट्र एवं सरकारी नेता, अमेरिका एवं अफ्रीके के उच्चाधिकारी, वरिष्ठ व्यापारी, निवेशक तथा फाइनेंसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्देश्य है व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी मजबूत करना। इस गतिविधि के लिए 2,500 से ज्यादा डेलीगेट्स मॉरिशस आएंगे। विदेशी समाचारों में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची आज गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। जापानी प्रधानमंत्री को औपचारिक गौरव भी दिया गया। स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय कराया। कुछ अन्य विदेशी खबरें भारती के साथ।
3: एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में दो विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2,300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनसे लोगों के जिंदा निकलने की संभावनाएं कम होती जा रही है। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति देलसी रोड्रिगेज ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।
1: संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। मॉग्रावियर बुबासेमे, रोजे पेजानी स्थित मॉग्रावियर बुबासेमे 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री विष्णुदत्त सुखी, श्री विष्णुदत्त सुखी जो विष्णु नाम से भी जाने जाते थे और पहले सन इंश्योरेंस और सेंट्रल एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोजा पेजानी स्थित मौकाविये बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचित्रविया के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। आवेन्यू नेपच्यून बोसोंज में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहन प्रसाद बिस्तो नारायण जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर आवेन्यू नेपच्यून बोसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2 PM। रू मागो प्लेनवेट में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के हुस्नबानो रामजीन जो हुस्नबानो नाम से भी जाने जाते थे

और पहले ब्लॉक सी 20 एनएचडी से रूट दे पॉम्पलमूस ला क्रोजे वाले दे प्रत रहती थी का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे आलिसान फिनरल सेंटर रिमागों प्लानवेट से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: दिन के 12:09 हुए हैं, आप विदिता का साथ दे रही हैं, एंड ऑफ कोर्स आप सबों का हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में।
1: एक कहानी,
0: खूबसूरत पुराने गीतों का ये सफर है जिसे हम तय कर चुके हैं और हम होंगे साथ दिन के 2 बजे तक।

0: ना प्रेम कहानी में एक लड़का होता है एक लड़की होती है कभी दोनों हंसते हैं कभी दोनों रोते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे रेडियो मनोरंजन पर ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं
1: सुहाना सफर
0: तो चलिए सुहाना सफर में हंसी और खुशी का जो माहौल है इसे हम बरकरार रखेंगे खूबसूरत गीतों का जो गुलदस्ता हमने आपके लिए तैयार किया है वो लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ रहूंगी मैं दो बजे तक उम्मीद करती हूं कि आप लोग हमें अपने मैसेज ज़रूर भेजेंगे नंबर आप जानते ही हैं 4028 0760 अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं 5250 6200 यानी अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं या बस 5 मिनट में हमारा टिकटॉक होने वाला है

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। 12:22 हुए हैं, विनीता का साथ दे रहे हैं आप लोग रेडियो मनोरंजन RM3 पर। स्वागत है आपका, जहां से भी साथ दे रहे हैं।
1: सुहाना सफर
0: तो चलिए देखते हैं सुहाना सफर में हमारे जो हम सफर हैं टिकटॉक के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। विमी, रेशमा राम, किसुन, विहावलीना, यलेश, फिया, नजीमा गोवर्धन, अजय, किशनी कुमार जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिजी आइलैंड से, और कहते हैं कि अभी तो हमारे यहाँ रात के 8:20 हुए हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो चलिए, हमारे यहाँ भी रात को ही सर्दी होती है, दिन में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन हमारे स्टूडियो में कमी नहीं होती है सर्दी की। चलिए, तो यहाँ पर गाना होगा नितेश बुलाकिया आपके लिए। एंड वी ऑल्सो हैव बीना जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माधुरी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। और साथ में यहाँ पर नितेश कहते हैं, हेलो टीम मनोरंजन को मेरा प्यार भरा सलाम। और यहाँ पर हमारे साथ दीप्ति गंदौरी जी जुड़ी हुई हैं, नमस्कार, आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं।
2: RM3 रेडियो

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए जी, ये सुहाना सफर है जिस सफर में हम आपका स्वागत करते हैं। और चलिए, यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी सारे और मैसेज आ गए हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा गाना होगा इंदिरा की तरफ से शाम के लिए, अकीश लोलिता, अकीश भाई थैंक यू सो मच। लोलिता, संजय, सूर्यमल रायापन हमारे साथ हैं। मिस्टर लव थैंक यू एंड आई होप यू लविंग द सॉन्ग्स ऑल्सो। हाई साहिल, कैसे हो आप? और बाकी हमारे दोस्त रेहा, कैसे हो? गाना जाएगा पूनम, विकास और अजमल के लिए। और

बाकी जो दोस्त हैं अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस समय गाड़ी चला रहे हैं हमें सुन रहे हैं प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं जी हाँ चलिए थोड़ी सी मस्ती हो जाए अब किशोरदा की आवाज़ में पेश है प्रोग्राम का अगला गाना फिल्म है नमक हलाल लगता है सारे अभी मूड में आ गए हैं डांस करने का मूड है अभी आपका धीरे धीरे पहुंच गए ना हम थर्सडे के दिन और बस करना क्या है जी हाँ दिन के 12:30 हैं और चलो भाई यहाँ पर मैसेज आया है हाँ बिल्कुल शादी में कुछ ज़्यादा ही हमने एंजॉय कर लिया लेकिन मौसम आपको पता ही है सर्दी ज़्यादा थी तो बस मेरे ख्याल से सबकी हालत ऐसी हो रही है आजकल और हमने जो गाने गए ओहो भाई हमारी सहेली की शादी थी एंजॉय तो करना था हमें चलो तो यहाँ पर गाना होगा आपकी तरफ से माला जी आपके दोनों पोते के लिए ध्रुव और ध्यान का आज बर्थडे है विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ध्रुव एंड ध्यान ये जुड़वे हैं बहुत क्यूट बच्चे हैं तो इनकी मम्मी दीपा उनके पापा दीपक की तरफ से उनकी दादी माला और उनके आजी माला और उनके दादा की तरफ से उनकी फूफू हैं यहाँ हमारे साथ चलिए किरण के लिए और उनके फूफा के लिए उनके चाचू बाबू के लिए और उनकी प्यारी सी बहन जरिश्का की तरफ से हैप्पी बर्थडे और बहुत सारा प्यार नाना नानी की ओर से भी

पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। चलो भाई आजकल डांस करना भी जरूरी हो गया है, एक्सरसाइज हो ही जाता है। ऐसे ऐसे गाने दे जब हमारे रेडियो पे चले तो थोड़ा सा झूमना जरूरी होता है। चलिए अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं। इंतकाम फिल्म का गाना है, हम ये गाना राम रेखा इंदिरा के लिए साथ में शांत के लिए डेडिकेट करेंगे जो पोंतो कॉलोनी से हमारे साथ जुड़े हैं। बबीता बुला की आदर्श की शादी हुई तो बहुत सारा प्यार आपके लिए। ज्योति चमन, अनीता उनकी बहन दीदो और सुनीता के लिए, यहाँ विशाल, तेज सनातन, रोशनी, देवना शर्मा और रोमिला सादेरी हैं। We have Anoush, Santa, उनकी बहन के लिए गाना मांग रही हैं। जीविता की शादी हो रही है तो उनके लिए भी बहुत सारा प्यार है। We have वेमा पिंतिया, जय श्री कृष्ण करुणा जी, सुविता कौतिक आपका स्वागत है, कविता अनु आपका भी। चलिए इसी के साथ माला जी कहती हैं कि एंटीबायोटिक लो भाई, हाँ हाँ ज़रूर लेना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि भाई आप टुकड़ा जो है जिंजर का वो हनी के साथ लिया करो, तुलसी के पत्ते या पान के पत्ते के साथ भी चलता है ना। चलो नमस्कार आपको, तरन दौलत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। विद्यानंद गोपाल जी कैसे हैं आप? नमस्कार सुबी, नमस्कार अमृता।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए जी, यहाँ पर अब समय हो गया है आगे बढ़ने का। हमारा जो प्रोग्राम है अगले गाने के साथ ऑलमोस्ट हम पहुँचने जा रहे हैं 1 बजे के समाचारों की ओर। चलते चलते यहाँ पर गाना हम बबीता बंधु, रवीना बंसी और साथ में मिन के नाम डेडिकेट करेंगे समीरा, रिक्शा, अहानीश, शोभा, मधु, शमा, बरखा, विशाल, उमेश, रोशनी एंड दिवीना। एंड वी हैव समवन सेइंग हाई फ्रॉम लंदन। हेलो जी, थैंक यू सो मच। एंड वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जितनी यहाँ पे सर्दी है वहाँ गर्मी होगी। संजय जगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हैं आप? चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, गाने सुनते रहिए। थैंक यू सो मच शोभा जी। रचना कैसे हो आप? नमस्कार। अनिश्ता रामतोहल नमस्कार। संध्या कैसे हो? नमस्ते। और चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे वो होगा, हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं गुलशन कौले सर। नमस्ते जी, कैसे हो आप? गाना आपके लिए। सरोज नमस्कार, हमारे सुपरस्टार भी साथ में हैं, क्या बात है। भाई हम तो ठीक ही है, बस थोड़ा गला खराब है, बाकी सब मस्त है।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

0: एक बज चुका है, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर। आपसे रजनी नमस्कार। आपको
1: नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज सुबह 6:30 बजे रोजिल में एक हिट एंड रन का मामला पेश आया। पुलिस सक्रिय रूप से एक चालक को ढूंढ रही है जिसने फैजाल होसानी को टक्कर मार कर भागने में कामयाब हुआ। अभी तक वाहन के बारे में पता नहीं चला है। 57 वर्षीय पुरुष रोजिल का रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के वास्ते ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के लिए देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लाक के सनेरो जगन्नाथ अस्पताल और पॉपुलर रिसर्च के शशि सागर रामगुलाम अस्पताल तथा थ्रियोलिया और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यूक्रोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वैस्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से 1 जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक मोजाम्बिक के पशुओं को लेकर निकाला जहाज एपेक्स LSS सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। भारती बिहारी के साथ।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकेची का आज गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। जापानी प्रधानमंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय कराया। और उधर रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेनियन राजधानी कीव पर किए गए वृहद मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हुई है। ये हमला आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया को एक बड़े हमले की धमकी दी थी।
1: संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। गंगवीन गली विल्नो मेबग में 67 साल की 67 years old की श्री नाज सिंह बिस बिहारी जो राजनाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर गंगवीन गली विल्नो मेबग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 4 PM। एपास माकाओ सिते मौसियाल में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद हनीफ अब्दुल्ला जो भाई मामद नाम से भी जाने जाते थे का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज शाम चार बजकर दस मिनट पर उनके बेटे जनाब मोहम्मद सलीम अब्दुल्ला के मकान एपास्मा का उसी तिमाचाल से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4:10 PM। रोजे पेजानी स्ट्रीट मगावी बुबासे में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री विष्णुदत्त सुखी जो विष्णु नाम से भी जाने जाते थे और सन इंश्योरेंस तथा सेंट्रल एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर और

0: to be M. Rue Magon plein Vêtement, Rue Magon plein Vêtement, 77 saal ke, 77 years old ke, Bibi Husna Banu Ramzin, Bibi Husna Banu Ramzin, जो हुस्ना बानू नाम से भी जानी जाती थी और पहले ब्लॉक सी 20 NHDC रोड दे पॉम्प्लेमूश ला क्रोजे वाले दे प्रेत में रहती थी का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे आलिसन फिनरल सेंटर विमागो प्लेनवेट से उठाकर अंतिम दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 1:30 PM। शुक्म रुबिन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

सुहाना सफर सुहाना सफर। दिन के 1:12 हुई हैं। अब चलिए देखते हैं, हमारे कुछ और दोस्त हैं हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। वेलकम करते हैं हम सुल्ताना खंदाई का, विंदा रामफल, शर्मिली हमारे साथ हैं, निर्देश जितन दुलवा, तरुण राम, मंजुला, उनके हस्बैंड संदीप कौली सर के लिए गाना मांग रहे हैं जो कौंदे मास कप्पावे से हैं, कीतिका शारदा लखनौत हमारे साथ हैं, अरुणा परी, शरीन रामजोन, दीपक बिहारी, और गाना जाएगा राजेश और इंदिरा के लिए, साथ में ही गाना जाएगा नेहा, संगीता, कुजोदा, कल्याणी हरी, और साथ में सविता के लिए श्यामा महिराली हमारे साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हेलो मरियम, कैसे हो आप? कमल, आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। चलिए इसी के साथ गाना आपके लिए होगा। कहते हैं कि आज मेरी मामी के 2 साल हो गए, ये हम मैसेज को समझ में नहीं आया, शायद आप उनको याद कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, गाना सुनिए। हमारा ये गाना होगा आपके लिए लता जी की, लता नहीं बल्कि आशा जी की आवाज़ में, और साथ दे रहे हैं रफ़ी साहब।

कदमों में तेरी जन्नत है मेरी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बहुत बहुत प्यारा सा गाना आपके लिए हम लेकर आए। चलिए इसी के साथ कुछ और गाने, लेकिन गीतों के लिस्ट में अभी एक और गाना आया है, ये है खरा खोटा फिल्म का गाना किशोरदा की आवाज़ में, और गाना हम अवनी के नाम डेडिकेट करेंगे। विश्वनाथ प्रयाग हमारे साथ हैं, शर्मिला सेवक, वैदेही, नीरू रामसन और अनु के लिए भी, और शाहीन इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगता है गर्मा गर्म बिरयानी का मज़ा ले रही हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सुनीता जी थैंक यू, गाना आपके लिए, और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे उनके लिए जो इस समय ऑफिस में बैठ के हमें सुन रहे हैं, और स्पेशली इक्वायो से देवांश, दादी सीता और श्वेता हमारे साथ हैं, सीना को बहेंगे हेलो एंड वेल।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: तुम्हें याद करते करते जाएगी अब नींद हमारी है ये सोने का टाइम तो है ही नहीं अच्छा है अगर उनका नाम लेते लेते आम की नींद उड़ जाती है वरना तो आप हमारे गाने सुनकर अपनी नींद को उड़ा सकते हैं और अभी के लिए जो गाना होगा ललित मोहन सान वी हैव अ विम रेनियन आइलैंड से वर्षा उनकी सिस्टर इन लॉ गीतिशा और उनकी फ्रेंड रानी के लिए डेडिकेट करी है गाना हेलो रेनियन आइलैंड वालों कैसे हो बबनीता अलीशा जो है उनके लिए गाना होगा मॉम उमा रामधन का आज बर्थडे है तो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे फीना की तरफ से भी उनके लिए बहुत सारा प्यार है एंड यही गाना होगा आपके लिए रानी के लिए आशा की तरफ से और मुझे पता है साहिल आप अभी हमारे साथ हो सुन रहे हो गाने सलोनी दोहा जी कैसे हो आप नेक्स्ट गाना किसके लिए आपके हस्बैंड के लिए और आपके दोनों बच्चों के लिए लवीश एंड भूमि चलो उनके लिए गाना हो जाएगा मम्मी का बर्थडे है तो मम्मी को हैप्पी हैप्पी बर्थडे वीना जी एक बार फिर से स्वागत है आपका और यहाँ पर मिथुन हमारे साथ हैं कहते हैं कि मॉरिशस में इतनी सर्दी हो रही है अरे नहीं नहीं स्टूडियो में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और यहाँ पर हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है घबरा नहीं आप ये यूके का स्विट्ज़रलैंड का फ्रांस का ये यहाँ की जो सर्दी होती है ना कनाडा वालों का ये तो कुछ यहाँ पे तो जो सर्दी होती है वो कुछ भी नहीं है बिलीव मी तनवीर खालिद आपका वेलकम है माया राम दोस्त काफ़ी देर से आई लेकिन आ गई कोई बात नहीं चलिए आपके लिए गाना डेडिकेट करते हैं एंड हमारे साथ हैं दहिला ओके दहलिया कौन है अच्छा नेक्स्ट गाना आपके भाई विक्की हरदयाल के लिए जो रहते हैं कैथोसे ये हैं त्रिशक्ति की तरफ से और साथ में अच्छा आपका ग्रुप है चलो ठीक है कीर्तन करते हो वेरी गुड तो ऐसा करते उनके लिए गाना चलाते हैं सभी ना आपका वेलकम है आपकी बेटी सोनाली शालिनी और श्रीना के लिए और आपके हस्बैंड के लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं और साथ में यहाँ स्मिता हमारे साथ हैं और तनवीर खालिद एक बार फिर आपका वेलकम है चलो यहाँ पर जगदीश जी साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच हमारे गाने को एंजॉय करने के लिए प्रार्थना आपके लिए भी गाना होगा थैंक यू सो मच दिल जीत लिया आपने गीता स्कॉटलैंड से हैं हेलो गीता जी कैसे हो आप यहाँ पर सब मुझे दवाई दे रहे हैं कि तो आप ये पियो आप सिथोनिल पियो आप ये पियो हाँ भाई थैंक यू सो मच
2: यू आर लिसनिंग ऑरएम फ्री रेडियो रेडियो रेडियो

चलिए प्यारा सा गाना डेडिकेट करते हैं केविन उमर आमदीन के लिए जिनका जन्मदिन है अनुष्का रघुवीर की तरफ से बिलोंग में हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं बिग हेलो वी हैव कूल मैन आशा नंदा नीलिमान अरुराधा माधुरी जी हमें कहती है कि भाई जल्दी करो अच्छी हो जाओ हाँ भाई हम अच्छे हो ही जाएंगे बस गला ही तो खराब है इसमें कौन सी बड़ी बात है ना ठीक हो जाएंगे हम

0: अब तो समझ में आ गया होगा खैर इशू वारिशू का मतलब क्या है।
1: सुहाना सफर
0: भाई हमारा तो सुहाना सफर है और इसमें हम बड़े खुश हैं। नेक्स्ट गाना संगीता सुखारी के लिए, अंदिनी के लिए, और यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो वेदिता, हैप्पी बर्थडे टू माय सिस्टर आरती, ये हैं ज्योति, प्रिया, प्रवेश, स्वीटी, विशाल, अवनीश और साथ में निक की तरफ से, और यहाँ हमारे साथ आकाश गौतम वो भी चरण है, नमस्ते जी, स्वागत है, हेलो क्वीन, कैसे हो मिस्टर लव, क्या बात है हमारे साथ जुड़े हो, आपको भी थैंक यू सो मच। और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम लवना के नाम चलाना चाहेंगे उनकी मम आशा फकीर के लिए जो पिचकाफे से है, और राधा जी कैसे हो, राधे राधे आपको, कहते हैं आपका फेवरेट सॉन्ग चलाओ, मेरा फेवरेट गाना हाँ चलाती हूँ लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये गाना हम चला रहे हैं। भाई अभी 2 बजने को ही हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो 2 बजे का ब्रेक लेते हैं, कुछ लोगों को तो अभी अभी लंच चल रहा होगा, तो बोना पीछे

0: दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो। चलिए भाई इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा हम संगीता सुखारी और अंजनी के नाम डेडिकेट करते हैं और साथ में जो दोस्त हैं उनके लिए भी।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए तो यहाँ पर सारिका हमारे साथ है, उनके लिए गाना होगा हाय ट्रैवल कैसे हो। बाय द वे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड हर्ष हाय कैसे हो आप?

0: चलिए इसके साथ करुणा आपके लिए गाना होगा और नेक्स्ट गाना जरूर आपके नाम हम डेडिकेट करेंगे. एंड यहाँ पर फैशन बुटीक हमारे साथ है. हेलो जी, कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए. साथ में यहाँ पर बिल्कुल साहिल, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, अब घबराओ नहीं. स्माया जी, थैंक यू सो मच. अनोर के आपका स्वागत है और साथ में तैयब भोला का भी वेलकम करते हैं. यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनके लिए भी. और साथ में गाना होगा आपके लिए, फिल्म का नाम. हम वैसे तो गाना जो लेकर आए थे आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना है. ऐसा करते हैं अभी नेक्स्ट गाने के साथ अब मैं आपको बाय बाय बोलूँगी, क्योंकि अभी जाने का भी टाइम हो रहा है. तो अभी हम आपके लिए हीरो फिल्म का गाना लेकर आए हैं, ठीक है? इस गाने को आप एंजॉय करें. एंड ललिता अकबर अली, विश यू अ स्पीडी रिकवरी. थैंक यू सो मच लैला, मीन्स अ लॉट, लॉट्स ऑफ लव टू यू. चलिए इसी के साथ हीरो का गाना है, तो जितने भी हमारे हीरोज़ हैं उन सब के लिए साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच.
1: RM3 Radio.
0: चलिए तो एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां है लव, एंड आपकी पूरी फैमिली की तरफ से, सभी फ्रेंड्स की तरफ से विशिंग यू अ ग्रेट डे अहेड. एंजॉय करें एंड जिंदगी जो है आपको हर वक्त मौके नहीं देती. जब मौका मिलता है खुश रहने का तो खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए. थैंक यू.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदय। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत करते हैं आप सब लोगों को। मॉरिशस में मधुमेह यानी कि डायबिटीज अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके इलाज और प्रबंधन में सुधार के लिए देश भर में विशेष केंद्रों का एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। G2 फ्लक के सज SSRN अस्पताल और थ्रियोले एवं फ्लोरियाल की मेडिक्लिनिक्स के बाद जल्द ही न्यू ग्रोव रूजवेल अस्पताल के पास एक पांचवा डायबिटीज और वैस्कुलर सेंटर खुलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय सभा ने इस मंगलवार को बिना किसी सुधार के अप्रोप्रिएशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे बजट 2026-2027 को अंतिम रूप मिल गया है। प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा प्रमुख रूप से शामिल है। एक 25x35 फूड सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना और साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करना है। फागई के CEO माधवी माधु के अनुसार ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मॉरिशस आज उपभोग किए जाने वाले भोजन का 70% से अधिक आयात करता है। और एक मौन परंतु महत्वपूर्ण बदलाव, जी हाँ, सैजों के नाइट शेल्टर में अब आधे से अधिक निवासियों की उम्र 19 से 45 वर्ष के बीच है। बेघर होना, जिसे लंबे समय से बुजुर्गों से जोड़ कर देखा जाता था, आज बहुत कम उम्र की आबादी को प्रभावित कर रहा है। ये चिंताजनक बदलाव है जो मॉरिशस में तेजी से बदलती बहाली और असुरक्षा को दर्शाता है। इस वास्तविकता के सामने शेल्टरों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आने वाली मांग लगातार बढ़ती जा रही है और सहायता की देखभाल की जरूरतें पहले से कहीं अधिक जटिल होती जा रही है। इस दिशा में सैजों के इस नाइट शेल्टर का उद्देश्य स्पष्ट है, इन लोगों को पुनर्वास, समाज में फिर से शामिल करने और उनकी आत्मनिर्भरता के पुनर्निर्माण की दिशा में उनका मार्गदर्शन व सहयोग करना है। और विदेशी खबरें रुद्रानी मोहबिया के साथ।
2: नमस्कार। पिछले 4 साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। संघर्षों से घिरी दुनिया में जहां एक ओर कई देशों के बीच युद्ध शुरू हुए और फिर बात शांति स्थापना तक पहुंची, वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शांति समझौते की स्थिति या फिर संघर्ष विराम की पहल दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इसी क्रम में स्थिति और ज्यादा गंभीर तब हो गई जब गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और सुइसाइड ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले ने यूक्रेन की राजधानी कीव को पूरी तरह से दहला दिया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर प्रांत में सैफुल्ला झील में एक टूरिस्ट बोट के पलटने से 60 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया। खबरों के अनुसार कलाम इलाके में यह नाव पलट गई, जिसमें एक ही परिवार के 8 सदस्य घूमने गए थे।
1: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। अशोक समाचार सुनते हैं गोंगुएं गली विलनोमेबर्ग में। गोंगुएं गली विलनो मेबर्ग में 67 साल के 67 years old के श्री नाज सिंह बिसहरी, श्री नाज सिंह बिसहरी, जिन्हें सब लोग राज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे उन्हीं के घर गेंगुएं गली विलनो मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबू मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4।
3: Impasse Macao, Cité Marshall, 78 साल की 78

8 years old key. जनाब मोहम्मद हनीफ अब्दुल्ला, जनाब मोहम्मद हनीफ अब्दुल्ला जिन्हें सब लोग भाई या मामद के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज शाम के 4:10 पर उनके बेटे जनाब मोहम्मद सलीम अब्दुल्ला के मकान एपस मकाओ सिते माउशाल से निकाल कर दफनाने के लिए खिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 4

0: प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM3 Radio. Radio. Radio.
2: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
3: स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में नाट्य कला कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों को नाटक की उस दुनिया में ले चलते हैं जहां पे लाइट्स होती है, कैमरा होता है, कैमरा आजकल तो कैमरा होते हैं रंगमंच में, और साथ ही साथ ऑडियंस भी होते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन होता है, एक्टिंग होती है, रोना होता है, हंसना होता है, सबसे ज़रूरी बात है समाज के लिए सीख मिलती है, वो भी रंगमंच द्वारा। आइए इस कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। आज के हमारे मेहमान है जो बेल्तिया से आई हुई है, आप है मंजुला शर्मा जी। मंजुला जी आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते।
4: धन्यवाद रितेश। नमस्ते,
3: आप कैसी है?
4: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: बहुत अच्छा। तो मंजुला जी, आप वैसे हमारे जो हमारे लिसनर्स हैं, हमें सुन रहे और देख भी रहे हैं, उनको बता दें कि आप एक हिंदी एजुकेटर हैं, बिच माधु गवर्नमेंट स्कूल में आप काम करती हैं, और साथ ही साथ आप एक अभिनेत्री हैं, नाटक में भाग लेती हैं
4: जी।
3: तो आज का कार्यक्रम बहुत ही रोचक होगा, थोड़े से आपके बारे में, थोड़े से आपके काम के बारे में, थोड़े से आपके पैशन के बारे में बात करेंगे।
4: ठीक है।
3: सबसे शुरुआत हम करते हैं आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ, थोड़े से अपने बारे में बताइए।
4: तो अभी के लिए तो मैं बिच माधु गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रही हूँ। इससे पहले मान लो कि बहुत पहले सप्लाई टीचर के जैसे काम किया, फिर उसके बाद मैं मॉरिशस छोड़ के दुबई चली गई थी, जहाँ पर मैंने एक भारतीय पाठशाला में, इंटरनेशनल स्कूल में, हिंदी की अध्यापिका के तौर पर काम किया। यहाँ पर वापस आके फिर से अपने देश वापस आने का मन किया, जुड़ गई थी। तो फिर अभी स्कूल के साथ जुड़ी हुई हूँ, और नाटक के साथ मैं कॉलेज के टाइम से जुड़ी थी, जुड़ के छोड़ना पड़ा, फिर से जुड़ी। मेरा जीवन ऐसा गया कि कभी जुड़ी कभी छोड़ा, लेकिन नाटक ना मुझे छोड़ता ना मैं नाटक को छोड़ती हूँ।
3: क्या बात है, बीच में तो ऐसे खफा हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रेमी ऐसे ही करते हैं, खफा हो जाते हैं फिर प्यार हो जाते हैं।
4: बोलते हैं कि ये जो धरती है ये एक रंगमंच है और हम उसकी कठपुतलियाँ हैं, तो अगर यह सब कुछ एक रंगमंच है तो फिर आगे जाकर मंच पर और नाटक करने में अलग ही मजा आता है।
3: बहुत ही सुंदर। आप कह रही थी कि आपकी शुरुआत हुई थी कॉलेज के टाइम पे।
4: जी।
3: कौन से कॉलेज में?
4: मैं मॉरिशस कॉलेज में थी, छात्रा थी, जिसको अभी हम ग्रेड 11 बोलते थे। तो हमारी अध्यापिका ने हमको एक ड्रामा में, एक नाटक में हमको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित की थी। बहन जी ग्रोडोयाल नाम था उनका, अभी वो मॉरिशस में नहीं है। तो उस समय हमने जब पार्टिसिपेट किया दोस्तों के साथ, उस समय इतना भरोसा नहीं था खुद पर, तो मैंने सोचा एक छोटा सा रोल करती हूँ कि देखना है अभी मंच कैसा होता है। शुरुआत की, फिर ऐसा हुआ कि पढ़ाई भी करनी थी, तो पढ़ाई पर ध्यान देते देते मैंने नाटक को अलग कर दिया। परंतु जीवन में ऐसा हमेशा लगता था कि नाटक मुझे छोड़ता ही नहीं था, क्योंकि मेरी आदत थी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने का। तो बाद में मैं पढ़ाई के लिए भारत चली गई, लेकिन चुलबुलापन ये वो तो छोड़ता ही नहीं था। वापस आने के कुछ साल बाद मेरी एक दोस्त थी, ऐसे हम बातें कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि वो, आपने राजगोकुल का नाम सुना होगा, तो उनके यहाँ वो जा रही थी ट्रेनिंग लेने नाटक की। मैंने बोला सच्ची में ऐसा है, मुझे भी आना है। तो बोलते चलो। तो वैसे थे हम बहुत अच्छे दोस्त थे, नाम वृंदा है उसका, हम साथ में जाने लगे राजगोकुल के यहाँ कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग ले। तो उसके बाद मुझे था कि मुझे और कुछ करना है, परंतु राह नहीं मिल रही थी। उसी साल मेरे गांव में एक वर्ष के अंत में एक प्रोग्राम हुआ, जहाँ पर सितोहर ग्रुप के कलाकार तीनों भाई आए हुए थे, तो उन्होंने नाटक किया, मंच पर नाटक किया। तो उनका नाटक देखकर कहीं ना कहीं मन को छू गया कि मुझे भी करना है, लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं उनके सामने, मैं करूँगी कैसे। तो उनको मैंने फेसबुक पर फॉलो किया, बाद में देखा कि उन्होंने एक पोस्ट डाला कि उनको कलाकार चाहिए, मैंने बहुत

0: मतलब झिझकते हुए उनको अप्रोच किया, मुझे भी करना है लेकिन मुझे, मैं कुछ खास नहीं आपके जैसे। फिर उनसे मुलाकात की, धर्मा सिटोहल से मुलाकात की, तो उनका एक वो एक ड्रामा नाटक लिख रहे थे हिंदी नेशनल फेस्टिवल के लिए, तो बोले कि आ जाओ मिलते हैं। फिर बातें हुई ना, कहानी सुनी मैंने, मैंने बोला मुझे ना एक छोटा सा पात्र दीजिए, मुझे मेन पात्र नहीं चाहिए क्योंकि मुझे डर लगता है अभी अभी आने वाली हूँ मैं इस दुनिया में। फिर पात्र हमने सोचा कि हाँ एक छोटा सा पात्र करेंगे, लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ जो मुख्य पात्र निभाने वाली थी माँ का क्या जो पात्र था, वो उस लड़की का कुछ ऐसा हो गया कि वो आगे नहीं बढ़ पाई हमारे साथ, और कोई था भी नहीं, तो मुझे बोला गया कि तुम ये कर लो। सच से मानो रितेश, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था जितना उन लोगों ने भरोसा दिखाया, धर्मा ने भरोसा दिखाया, राजेश्वर ने भरोसा दिखाया कि आप कर सकते हो, हम सिखाएंगे आपको। उस भरोसे पर मैंने इस एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसको फिर हमने सीखना करना सब शुरू किया। फिर समय आने लगा कि हम प्रेलिमिनरी पे गए, प्रेलिमिनरी पर सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से फिर फाइनल पर पहुंच ही गए। परंतु ये जो दौर था, इस बीच हमेशा ऐसा लगता था क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि अब एक सपना आने लगा था कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतना है, तो क्या ये सपना पूरा होगा। अब ऐसा हो गया कि सपने, ये सपना दिखा तो दिया, अब पूरा तो करना है। पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, सब मान लो कहीं पर प्रोत्साहन था तो कहीं पर ऐसी बातें भी थी कि तुम नहीं कर सकती हो, और मैं बचपन से ज़िद्दी, नहीं कर सकती हूँ ये मत बोलो मुझे क्योंकि ये मुझे चुभ जाती है। तो मैंने उस बात को ठान लिया, आपने बोला मैं नहीं कर सकती हूँ, जिन्होंने भी बोला मैंने ध्यान में रखा, आपने बोला मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं करके दिखाऊँगी। अब ठान कर ऊपर वाले की आशीर्वाद से वो हो पाया और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अपने जीत पाई,
1: जो अभी शील में हमारे सामने टेबल पर
0: जी। और अच्छा। ये इससे मुझे फिर ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ये ज़रूरी है कि हमें कोई चाहिए हमको सिखाने वाला, प्रोत्साहन करने वाले, और बहुत कुछ है जो जीवन के अनुभव से सीखा। ये अवार्ड कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी जुड़ा था, क्योंकि अगर आपको बताऊं ये इसका शीर्षक था आशा दुखस्य कारणम, तो हम आशा बहुत रखते हैं जीवन से, माँ बाप भी बहुत रखते हैं। तो इसमें ये था रितेश कि जो माँ है ना, बहुत सालों बाद माँ बनती है, फिर बच्चा विदेश चला जाता है, और उस समय ना बहुत बच्चे मौसा छोड़ के विदेश जा रहे थे, उनमें से मेरा भाई भी था कुछ एक दो साल पहले गया था वो। तो मैंने वो समय देखा कि माँ भाई के लिए कैसे रोती थी, वो एक लौता बेटा है और बच्चा दूर चला गया, वो जो मैंने देखा वो मेरे किरदार में भी वही था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर विदेश चला गया।
1: मतलब आपने अपनी माँ को देख देख कर सीखा
0: वो, क्योंकि जब मैं भारत गई थी तो मैंने देखा नहीं माँ का दुख, नहीं देखा,
1: माँ रोई नहीं,
0: माँ रोई थी लेकिन मैंने नहीं देखा क्योंकि अच्छा, मैं भारत अच्छा, में बैठी थी,
1: भारत में थी
0: वो, तो यहाँ पर है मैंने नहीं देखा। परंतु मेरे आने के बाद जब भाई गया तो मैंने अपने सामने वो दुख देखा कि कैसे रोती है, क्या होता है, खुशी थी कि बच्चा आगे बढ़ रहा है, परंतु वो माँ का प्यार होता है ना कि मेरा बेटा अलग हो गया, तो वो देख देख कर मैंने मतलब काफ़ी कुछ सीखा। और हमेशा एक चीज़ मैंने धर्मा से सीखा, उन्होंने हमेशा एक बात बोले कि मैं जब भी लिखता हूँ ना मुझे समाज से प्रोत्साहन मिलता है, तो मैंने भी यही किया, अगल बगल में प्रोत्साहन ली, इसको देखा तो कभी उसको देखा कि कैसे करते हैं जब कुछ होता है, तो उसको मैंने फिर हमेशा अपने आप में ढाल लिया और ऐसा चलता रहा हमेशा।
1: आप अभी माँ सुन रही है?
0: माँ नहीं, अभी वो टीवी देख रही है,
1: टीवी देख रही है। तो चलिए, अगर माँ हमें सुन रही है या फिर हमें देख रही है तो माँ से कहेंगे कि माता जी जब बेटा गए थे तो आप रोई थी, जब अभी मंजुला जी गई थी तो आपको देखा नहीं लेकिन आपको देख देखकर वो स्टेज पर चली गई और आपका ही किरदार उन्होंने निभाया है स्टेज पर। मंजुला जी, आपने एक बात कही, कामयाबी मतलब भरोसा होना चाहिए, कामयाबी भरोसे पर टिकती है, आपका क्या विचार है?

0: अगर आपने वो नींव रख दिया कि मुझे भरोसा है खुद पर, मैं कर सकती हूँ, ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना इम्पॉसिबल वाला शब्द, इम्पॉसिबल में छिपी है आई एम पॉसिबल. तो जब तक हम लोगों को लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो हमने वो दिमाग में बिठा लिया, हम नहीं कर सकेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं कर सकेंगे. लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं कर सकती हूँ, रास्ते हज़ार खुल जाते हैं आपके सामने. जिस पल हम सोचते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं एक एक कदम आगे लूँगी, तो उसके सामने मैंने हमेशा यह देखा है कि जब एक कदम आगे बढ़ाया तो बहुत से लोग आ जाते हैं मदद के लिए. कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई मसीहा आ जाता है जो आपकी मदद करता है और आपको कामयाबी तक ले जा देता है. तो एक अध्यापिका होने के एक अध्यापिका हूँ तो मैं यही कहूँगी कि हम अपने छात्रों को भी यही सिखाते हैं. अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं रखूँगी तो मैं अपने छात्रों को कभी ये सिखा नहीं पाऊँगी कि भरोसा रखो और तुम कामयाब हो जाओ.
1: बिल्कुल.
0: तो वो कदम कदम चलना पड़ता है, सीढ़ी की तरह एक एक कदम चलते जाओ तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी.
1: जब आपने कहा कि जो धर्माश तोहल जी है और राजेश्वर सिंह तोहल जी है, दोनों भाई, वैसे तीन भाई हैं, हाँ, वहाँ से आपकी मुलाकात हुई उन लोगों से और आपने सोचा कि चलिए हम ट्राई करते हैं, अपने जीवन को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, और बाद में जाकर आपको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिलता है आशा दुखद से कारण
0: जी.
1: लेकिन मेरा प्रश्न ये है, जब आपने पहली बार स्टेज पर ऑडियंस को फेस किया, कई लोग सोचते हैं कि हम नाटक में भाग ले लेंगे क्योंकि मैं तो बहुत डरता हूँ, या फिर बहुत डरती हूँ लोगों के सामने आके पता नहीं क्या बोल दूंगा. आपने अपने स्टेज फ्राइट को कैसे उसका सामना किया, कैसे उसको दूर किया?
0: तो पहले हमको हमेशा बोला जाता था, जब स्टेज पर जाओ ना, सामने मत देखो जो सामने बैठे हैं, दूर देखो. तो फिर जब स्टेज पर रिहर्सल करने गए, मैंने सोचा सामने ना देखूं दूर देखूं, ये मुझसे नहीं हो रहा था. मैंने एक ही काम किया कि मैं जब उस किरदार में, मैं स्टेज पर पहुंची तो अपने किरदार में पहुंच जाओ, कि पूरी तरह से भूल जाओ कि कोई देख रहा है आपको. आप उस पल को जी लो, उस पल को जियो, और अपने आपके सामने जो पात्र है उनके साथ चलते रहो, अपने डायलॉग्स बोलो, पूरी तरह से ऐसा मानो कि ये जीवन का एक हिस्सा आपका चल रहा है. आप भूल जाओ कि सामने कोई है, क्योंकि देखने वाले तो सिर्फ वहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, हमको पता है कि हमको क्या बोलना है या क्या होने वाला है. तो आप बस भूल जाओ दुनिया को और बस मगन हो जाओ उसमें.
1: कई लोग देखते हैं, सोचते हैं कि ड्रामा, ये तो ड्रामा बहुत ही आसान है, हम तो चढ़ जाएंगे, हम तो डायलॉग बोल देंगे. आपने नाटक में भाग लिया है, ड्रामा करना, नाटक करना, अभिनय, एक्टिंग करना आसान होता है?
0: मैं ये नहीं बोलूँगी कि आसान है, ना ही बोलूँगी कि कठिन है. बस आपको अपने अंदर जो डर रहता है ना, उसको निकाल लो, और जैसे भावनाएं लानी है उसको लाते जाओ, उस पर काम करो. अगर रोना है, मैंने बहुत से ऐसे माँ वाले किरदार निभाई, पता नहीं मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है. तो और ज़्यादातर ऐसा हुआ कि रोने वाली माँ का किरदार में जाते हैं, और रोने में मैं एक्सपर्ट हो गई करते करते. तो एक आदत सी हो जाती है कभी कभी, लेकिन अगर हम कोशिश करें ना तो वो आसान ही हो जाता है, बस कोशिश करना होता है.
1: कार्यक्रम से पहले आपने एक फोटो दिखाया जहाँ पे आपकी दाढ़ी थी, ऋषि का रोल आपने निभाया था
0: जी.
1: आप एक महिला है, महिला होने के नाते आपने एक पुरुष का रोल निभाया, वो भी एक ऋषि का, जो आजकल नहीं दिखता है, होगा भारत में या फिर कहीं हिमालय की गुफा में, लेकिन आपने उसका रोल निभाया. मैं जानना चाहूँगा कि आप एक महिला होने के नाते आपको कैसा लगा, आपका अनुभव, और आपने अंदर अंदर तैयारी कैसे की?
0: सबसे पहले बोलूँगी कि मैं महिला तो हूँ, लेकिन बचपन से ना ऐसा लगता है कि मैं लड़का क्यों नहीं थी. तो पापा ने हमेशा मुझे ना अपना बड़ा बेटा बोला. मुझे शौक था कि मैं पापा जैसे बनूँ. तो जब धर्मा ने मुझे अप्रोच किया ये इस रोल के लिए, तो सबसे पहले थोड़ा ऐसा लगा कि मैं कपड़े क्या पहनूँगी, लेकिन मैं ये कैसे करूँगी वो कैसे करूँगी, क्योंकि लड़की हूँ, अब ऋषि जैसा दिखना है, और दिखना तो अच्छे से चाहिए, क्योंकि वो संत कबीर का एक रोल एसोसिएशन था, जो एक प्रोग्राम था उनका. तो धर्मा ने बोला कि मेरे

0: पास कपड़े मैं आपको दे दूंगा, आप ये पहनना, ये करना। थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा कि क्या मैं कर पाऊंगी। तो फिर ऐसा लगा कि आपको एक मौका मिल रहा है कुछ अलग करने का, तो कोशिश कर लो। तो उससे पहले मैं गई उनके यहाँ कि मुझे सबसे पहले मुझे दिखाओ कपड़े कौन से हैं, मुझे कपड़े ट्राई करने हैं कि है क्या, पहन के देखूँगी मुझे मैं दिखती कैसी हूँ। पहना, फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने एक दो बार सोचा, पति से पूछा, दोस्तों से पूछा, हाँ ठीक लग रहा है। उसके बाद दो दिन में ये सब तैयारियाँ की थी हमने, ज़्यादा समय नहीं था। तो दो दिन में मेन मेरा यही था कि मुझे कपड़े पर पता होना चाहिए, एक बार कपड़े का पता चला, डायलॉग तो बस हो जाएगा, क्योंकि ऋषियों की आवाज़ भी थोड़ा सॉफ्ट ही थे। और जिस दिन लेकिन हम सच्ची में स्टेज पर गए, थोड़ा सा उस दिन मुझे हंसी बहुत आ रही थी, क्योंकि जब मैं दाढ़ी निकाल के बैठी थी और सर पर भी जो था सब बाल निकाल के बैठी थी, तो सब ने देखा ये तो लड़की बैठी हुई है यहाँ पर, दिख रही है लड़की। फिर जब दाढ़ी वाड़ी हमने तैयारी करना शुरू कर दिया, तो जो भी आ जा रहे थे उनको बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को देखकर। अब मैं ऐसी हूँ कि हंसी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिर बहुत संभालना पड़ा खुद को। और फिर बाद में ये भी आया कि लोगों को थोड़ा अजीब लगा जब नाम सुना कि नाम है स्त्री की और है किरदार ऋषि की है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसके बाद भी मैंने और ऐसे एक दो रोल्स किए हैं, तो अच्छा लगा।
1: मंजुला नाम है आपका, मंजुला में मैन ही है और धर्मा ने, धर्मा तो धर्मा प्रोडक्शन बन गया वहाँ पे बॉलीवुड में, वे नए को मौका देते हैं, यहाँ पे आप जैसे नए को मौका देते हैं और हमारे देश में नए नए कलाकार आ जाते हैं। वैसे सितोहल ब्रदर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आप जैसे कलाकारों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे देंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपका एक पसंदीदा गाना है नया सिरे
0: जी,
1: तो आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए प्यारा सा गाना नया सिरे, सुनते रहिए।

0: कामयाबी भरोसे पर टिकी होती है। आप सोचेगा अगर मंजुला जी को भरोसा नहीं था कि वो आगे कर बढ़ सकती है, मंच पर उतर सकती है, एक्ट कर सकती है, तो आज स्टेज पर नहीं होती, आज उसके जीवन में वह बदलाव नहीं आता। बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे साथ है मंजुला शर्मा जी। आप हिंदी एजुकेटर है, बिचू माधुक विमित स्कूल में आप काम करती है और नाटक में भाग लेते हैं, आप एक अभिनेत्री है। वैसे मंजुला जी, आपने कितने नाटकों में भाग लिया?
1: हाँ, गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन 10-15 से ज़्यादा होगा।
0: 15 से ज़्यादा
1: हो गया। नाटक किए हमने, शोज किए और फिर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए।
0: यह शील आपको किस साल में मिला?
1: 2014 की है।
0: 2014, तो मतलब कोविड से पहले।
1: कोविड से बहुत पहले,
0: बहुत पहले। नाटक का आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन नाटक ने लाया?
1: सबसे पहले भरोसा होता है बात करने के लिए, समाज में खड़े होकर बात करने या कहीं भी, डरने लगता है अब, क्योंकि हमको आदत हो गई है कि थोड़ा सा डर लगता है जब स्टेज पर जाते हैं, लेकिन 2 मिनट में ऐसा लगता है वो डर कहीं भाग गया। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि मैं उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपने जीवन में ही, कुछ बात करते करते अपनी आवाज़ बदल लेना, या फिर कभी हंसते हुए कुछ बोल लेना, या फिर रोने की एक्टिंग कर लेना, कभी पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ कर लो। तो मुझे लगता है कि उस पल मैं हर पल को जी लूँ, तो नाटक ने मुझे बहुत कुछ सिखा कि आप हर पल को जीते जाओ ना, क्योंकि जो नाटक में होता है वो समाज में हो रहा है, हमारे जीवन में हो रहा है, और जो जीवन में हो रहा है वो नाटक में हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं।
0: बहुत ही सुंदर। आप एक उदाहरण देंगे किस तरह से आप अपनी आवाज़ बदलती है, या फिर कोई अभी तक कोई लाइन याद है आपको?
1: लाइन तो याद नहीं है, लेकिन अभी जैसे छात्रों को जानवर पर सिखा रहे थे।
0: अच्छा।
1: जानवर बोला तो मैंने देखा कि ना छात्र को जब कुत्ता बोलो ना, बोलते वुफ वुफ, क्योंकि यूट्यूब पर उन्होंने वुफ वुफ सुना। मैंने बोला वो वुफ वुफ कहाँ कहता है? वो कहते हैं रा, रा। तो बच्चे इतने खुश हो गए कि अरे ये कैसे क्या कर रही है। तो ऐसे हमने 2-3 जानवर की आवाज़ जब निकाली तो उनको वो बात याद रहने लगा कि हाँ, अब गाय का बोला, बोलते मुँह, मेरा मुँह करते हैं, तुमने कभी सुना गाय को मुँह करते हुए? तो बोलते मुँह करता है। तो हमारे बच्चों का क्या है ना कि उन्होंने यूट्यूब सुन सुन के एक अलग सी धुन दिमाग में रख दिया, और मैं क्या करती हूँ कि अलग से धुन निकाल कर उनको बोलती हूँ जीवन में वो सही तरीके से कैसा है। तो ऐसा फिर क्या होता है कि मुझे भी आनंद मिलती है, बच्चों को भी, और पढ़ने में उनको मजा भी आ जाता है।
0: बिल्कुल। और ये भी बोलना चाहिए वो फूफ ना बेटा, वो पालतू वाला होता है, वो वाला वो थोड़ा सा मतलब खतरनाक वाला होता
1: है।
0: और आपने भाग लिया है, और कितने किरदारों को आपने निभाया है? अलग अलग प्रकार,
1: अलग अलग किया, कभी माँ का

0: रोल किया कभी एक, जब मैं वापस आई थी मॉरिशस, तो एक था जहाँ पर जैसे दंगा फसाद वाला रोल करना था, तो उसके बारे में बताती हूँ कि आदर्श ने फोन किया एक दिन कि मंजू
1: दंगा करना
0: एक ड्रामा है आ रहा है, आप भाग लोगे? हाँ, मुझे तो वापस आना है अपनी दुनिया में। तो फिर लेकिन ना वो जो है ना आपके कैरेक्टर से बहुत अलग है, क्योंकि उसने मुझे हमेशा वो माँ वाले रोल्स में बहुत ढाला था। तो ऐसा है कि दंगा फसाद टाइप वाला है आपको करना होगा ना? ठीक है, चलेगा, कर लेंगे कोशिश, क्योंकि मैं इतनी भी अच्छी तो नहीं हूँ। तो फिर मुश्किल तब आई जब उसने मुझे बोला कि वो क्रियोल भाषा में होने वाली है। मैं कुछ महीने पहले ही दुबई से वापस आई थी और मैंने सालों तक बहुत कम क्रियोल में बात की, मैं ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी में बात कर रही थी। फिर मेरे पति भी इंडियन है तो ससुराल तो पूरा वही, तो अब क्रियोल में बात करनी थी। तो जब वो किया, वो किरदार चैलेंजिंग था क्योंकि मेरी क्रियोल अजीब से ही हो गई थी, इंडियन जैसे क्रियोल। तो उसमें मुझे बहुत मतलब बहुत रिहर्सल करना पड़ा, फिर वही पूरे खुद को चेंज करना, दंगा फसाद करना है, अब वो भी क्रियोल में चिल्लाना है, तो कोशिश करो। फिर हमने इस साल शोज़ किए हर परौड़ी पर, हमने बिहार बिहारियों को के जैसे मतलब जो किरदार निभाना था, तो अपने पूर्वजों का भी किरदार निभाया, जो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो लोग जीवन कैसे जीते थे वो एहसास करना बहुत अलग था।
1: एक्टिंग में, नाटक में अगर भाग लेंगे तो मौका मिलता है ना दूसरे की जिंदगी के बारे में जानना, वही लोग उन लोगों ने कैसे दुख झेला है, उन लोगों का जीवन कैसा है, मतलब एक जिंदगी में अनेक रोल निभाना, मतलब ये मौका मिल जाता है।
0: जी जरूर।
1: आपने सिर्फ एक्टिंग की, लिखा नहीं, डायरेक्शन नहीं किया?
0: लिखना कुछ ज़्यादा तो कभी कभी कविताएं लिख देती थी। डायरेक्शन के मामले में मैं यही बोलूँ कि जब मैं दुबई में थी तो हमारा क्या होता था कि हम हर कक्षा को, हर सप्ताह एक कक्षा को असेंबली करनी पड़ती थी और हमको एक थीम मिलता था। अब उस थीम में आप चाहे पोस्टर्स बना दो, डांस करवा लो उस थीम के आधार पर, या फिर नाटक कर लो। तो मैंने उस समय ये किया था कि अपने छात्रों को मैंने एक्टिंग सिखाया था कि जो थीम हमारे होते थे उसमें कभी डांस या फिर और एक्टिंग दोनों को थोड़ा मिलाकर हम करते थे। तो वैसे क्या हो जाता था कि दूसरों को कुछ अलग देखने को मिल जाता था, क्योंकि कोई नाटक करवाना नहीं चाहता था हमारे यहाँ। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने छात्रों को वो सिखाती रहती थी, तो वो बहुत अच्छा चलता था। फिर उनको भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनको कुछ अलग करने को मिलता था।
1: आपने कहा कि आप कविता लिखती है
0: बहुत पहले
1: बहुत पहले, अभी याद नहीं
0: नहीं, क्या हुआ कि मैंने लिखना शुरू किया था भारत में।
1: अच्छा।
0: जब आप भी भारत में रहे हो, आपने देखा कि वहाँ पर हमारा जीवन उनका जीवन बहुत अलग है। जब भी कॉलेज जाती थी तो सड़कों पर जब उन लोगों को देखती थी ना, जो गरीब लोग होते थे, उनको देखकर कुछ एक अलग सा ही भावना आती थी कि इनका जीवन कैसे गुजरती होगी। तो हर दिन मुझे कुछ नया दिखता था, तो वहाँ पर फिर मैंने लिखना शुरू किया था। और फिर क्योंकि क्या है ना, परिवार कोई नहीं है, आप अकेले में जब घर आती थी तो उस पर सोच विचार करके लिखना शुरू किया था। फिर वापस आने के बाद ऐसा लगा कि समय ही नहीं मिलता था, फिर मैं जुड़ गई नाटक के साथ, तो लिखना थोड़ा छोड़ ही दिया।
1: भारत में आपने नाटक में भाग नहीं लिया? मौका नहीं,
0: नहीं मौका नहीं मिला, परंतु रास्ते पर एक थिएटर पड़ता था हमेशा, फर्गुसन कॉलेज जब जाते थे तो रास्ते पर एक थिएटर पड़ता था हमेशा, और मैं वो देख के मुझे लगता था कि मुझे भी करना कुछ ना कुछ एक दिन।
1: वो कहाँ पे होता है रास्ते पर, मतलब
0: फर्गुसन से वापस आते समय बस स्टेशन के पास था वो।
1: अच्छा।
0: तो फर्गुसन या यूनिवर्सिटी से वापस आती थी मैं, जो हमारा मेन यूनिवर्सिटी था, तो बस स्टेशन के पास एक था, तो बहुत बार मैं वो देखती थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड हमेशा प्लान करते थे जाकर एक दिन नाटक देखेंगे। वो हुआ नहीं, लेकिन वापस आने के बाद हो गया, यहाँ पर आने के बाद मैं फिर से जुड़ गई।
1: मैंने क्यों पूछा कि आप लोगों को बता दे कि अभी मंजुला जी ने कहा है कि उनका ग्रेजुएशन हुआ और एमए भी आपने किया है पुणे यूनिवर्सिटी में, और आप फर्गुसन कॉलेज जाती थी, वहाँ पे मैं भी पढ़ा था भारत में पुणे में, और जब हम ग्रेजुएशन के लिए गए तो आप आपकी अपनी एमए पूरा कर रही थी।
0: हाँ, शायद आपका बीएफ कट पूरा हो रहा था, मैं एमए पूरा कर रही थी।
1: तो आप हमारी सीनियर है

0: तो बहुत अच्छा लगा एक ही मंच पर, एक ही मंच को शेयर करते हुए। आप ने कहा कि आप फिर भारत से होकर मॉरिशस पे आ रहे, फिर दुबई चले गए
1: जी।
0: ये दुबई की यात्रा के बारे में बताएं, किस तरह से कैसे तय हुआ?
1: दुबई की यात्रा ये हुई कि शादी करके जाना पड़ा।
0: अच्छा।
1: मेरे पति दुबई में थे तो शादी करके जाना ही पड़ा। हालांकि शुरुआत में मतलब इतना मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि वो दुनिया ही एक बहुत अलग दुनिया थी। वहाँ पहुँच कर मानो कि शुरुआत में तो बहुत डर लगता था, क्योंकि सब कुछ अलग था, हर चीज़ एयरपोर्ट पर। एक तो सबसे पहले एयरपोर्ट का जो सीन था, वहाँ से ऐसा लगा मैं पीछे भाग जाऊँ, क्योंकि
0: उस समय तो शादी हो गई थी।
1: हाँ, लेकिन जब शादी के पहले मैं गई, फिर उसके बाद हमने आकर शादी की, क्योंकि जॉब का भी देखना था, अब देखना था कैसा है वो वहाँ पर। तो जब मैं उतरी एयरपोर्ट पर तो सब कंदूरे में थे, वो वाइट पहनते हैं ना वो लोग, तो हम यहाँ पर एयरपोर्ट में कलरफुल देखते हैं, वहाँ पर सबको वाइट में देखा। मैंने सोचा ये क्या चल रहा है, क्या है ये सब कुछ। डर डर के गई, फिर मौसम से काफ़ी जूझना पड़ा क्योंकि गर्मी की वजह से। समय के साथ जब वहाँ पर एक इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में जॉब लग गई मेरी, तो जीवन बदलने लग गया और मुझे मौका मिला बहुत कुछ सीखने का। मुझे लगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई हूँ, जो ICT टेक्नोलॉजी है, चीज़ जो भी नया कुछ आ रहा है लाइफ में वो आपको सामने है वहाँ पर। तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, और एक स्कूल भी इंटरनेशनल था। तो आपके मतलब मैंने यहाँ पर तो हम मॉरिशस के बच्चे को पढ़ाते हैं, वहाँ पर ऐसा था भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेशी, हर जगह के बच्चे आ रहे हैं,
0: पूरी दुनिया के बच्चे
1: हैं, और आपको सबको एक छत के नीचे रखना है। तो चैलेंजिंग था शुरुआत में, क्योंकि मैंने ऐसा कभी था ही नहीं हमारी लाइफ में, हमने देखा नहीं था। लेकिन और दूसरी बात ये भी चैलेंजिंग था कि मैं अकेली मॉरिशियन थी वहाँ पर, सब लोग भारत के थे या फिर पाकिस्तान थे, जो मेरे कॉलिग्स के थे ज़्यादातर केरला के थे इंडिया से। तो अपनी पहचान बनानी थी वहाँ पर, तो उसको उसके लिए बहुत जूझना पड़ा। कभी रो भी लेती थी वापस आकर, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर ऐसा लगता था कि मेरी जगह नहीं है शायद। फिर वैसे यही हुआ कि चैलेंज था, लेकिन एक्सेप्ट करके अपनी जगह बनाई, और जगह ऐसे बना दी कि हमें अभी भी याद करते हैं सब लोग कि वापस आ जाओ।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और अच्छा मंजुला जी, अगर स्टेज पर आपने अपनी जगह बना दी तो पूरी दुनिया में आप अपनी जगह बना सकती हैं। अच्छा एक बात बताइए, दुबई में आपको मौका नहीं मिला वहाँ पे स्टेज पर चढ़ने के लिए, नाटक में भाग लेने के लिए?
1: नहीं, मुझे नहीं मिला वहाँ पर जी, लाइफ अलग थी। मैंने ज़्यादा मैं नाटक के सिलसिले में वहाँ पर कुछ नहीं करना चाहती थी, मुझे उतना ये नहीं था, क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहते थे, क्योंकि डिमांडिंग भी बहुत था, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया करना ही था, कक्षा के लिए ये करना वो करना, तो समय भी नहीं मिलता था। लेकिन जब मूड होता था कि अरे बहुत याद आ रही है नाटक की, दोस्तों की, तो फ़ोन पकड़ लिया और सितोहल भाइयों से बात शुरू हो जाती थी, और हम लोगों की मतलब फ़ोन पर ही शुरू हो जाती थी ड्रामा की बातें या ये करना वो करना, और यही रहता था। धर्मा हमेशा बोलते थे वापस आओगे ना आप, वापस आना फिर हमारे यहाँ फिर से, ना जरूर आऊँगी मैं, जो मेरी जगह रखी है वहाँ पर।
0: अच्छा जब आप नाटक में भाग लेते हो तो एक टीम होती है, रोज या फिर हर दो दिन मिल जाते हैं, चाय पी लेते हैं, परिश्रम करते हैं साथ में, रिहर्सल करते हैं, एक रिश्ता बन जाता है आपस में।
1: हाँ जी,
0: और ये रिश्ता पूरे जीवन के लिए होता है।
1: वो होता ही है हमारा, जैसे मैं सितोहल भाइयों के साथ अपना बताती हूँ पहले। धर्मा के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो एक दोस्त के जैसे बने हम लोग ने काफ़ी कुछ बातें की थी, तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और मैंने उनको अपना गुरु भी माना एक तरह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। राजेश्वर के साथ क्या हुआ कि वो मेरे पहले ड्रामा में मेरा बेटा रहा, तो वो माँ बेटे का रिश्ता रह गया हमेशा के लिए। फिर राजीव हैं, राजीव के साथ भी दोस्ती अच्छी बन गई, तो उस समय हम ज़्यादातर मुलाकात मेरी ज़्यादा हुई धर्मा और आदर्श के साथ। तो हम लोगों का वो रिश्ता जब बन जाता है ना, तो आपको लगता है कि बोलते हैं कि सिर्फ खून का रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, एक अलग ही रिश्ते होते हैं जो बाहर बनते हैं दोस्तों के साथ। और फिर धीरे धीरे जब

0: फिर और नए कलाकार आते हैं, हर एक के साथ एक अलग ही रिश्ता बनता है, कोई बहन बन गई, कोई बेटी बन गई, और हम लोग क्या करते हैं कि जब स्टेज पर उसके साथ एक रिश्ता बन गया, उसको हम अपने जब मिलते हैं तो उस जीवन में उस रिश्ते को रखते हैं, और बहुत मज़ा आता है। कोई आपको दीदी बुला रही है तो कोई माँ बुला रही है तो कोई कुछ और बुला रही है, तो ऐसा लगता है कि एक जीवन पूरा हो गया। और फिर कभी किसी ने मुझे एक बात बोली थी, जब तक माँ नहीं बनो ना, जब तक आपका खुद का बच्चा नहीं होता है, तो आपको पता नहीं होता है माँ क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि मैंने इतने किरदार निभाए, इतने मतलब बच्चों का रोल आता है सामने, कि मुझे पता नहीं चला कि कभी कि माँ बनना मतलब आपको अपना बच्चा ही चाहिए। अगर माँ बनना है ना तो आपके अंदर ममता होना चाहिए, आप उसको बांटते जाओ तो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है।
1: बहुत ही सुंदर। एक तो आपका आपकी निजी जीवन में आपका अपना रिश्ता होता है
0: जी।
1: फिर उसको छोड़कर जब रिहर्सल में जाते हैं, नाटक करते हैं, वहाँ पे एक और रिश्ता बन जाता है कहानी के आधार पर
0: जी।
1: और कहानी को निभाते निभाते, पात्र को निभाते निभाते, आपके को एक्टर्स के साथ एक और रिश्ता बन जाता है
0: जी।
1: मतलब रिश्ते के साथ रिश्ता ही बनता
0: जाता है, चेंज ऐसा हो जाता है वो।
1: तो चलिए इस रिश्ते को और निभाते, इस कार्यक्रम को और बढ़ाते हैं, आपको सुनाते एक प्यारा सा गाना, उसके बाद फिर आते हैं।

0: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: नाट्य कला आप लोगों के लिए और अब भावों की धारा बह रही है, रंगों की भाषा में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मंजुला शर्मा जी और आप हमारे साथ अपने जीवन का अनुभव बांट रही है, आपके जीवन का अनुभव नाटक के साथ और हिंदी शिक्षण के साथ। तो अभी आपने बात है कि आप दुबई चली गए, वहाँ पे आप वहाँ के बच्चों को, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को आप पढ़ाती थी, फिर उसके बाद स्थानीय स्तर पर फिर आ गए आप और अपने मॉरिशस में वापस आ गए और यहाँ पे भी आपने काम किया। थोड़े से आपके शिक्षण के बारे में, आपके काम के बारे में हम जानना चाहेंगे। बच्चों को किस तरह से नाटक के माध्यम से आप हिंदी को पढ़ाते हैं और क्या नाटक सहायक सिद्ध हो सकता है हिंदी को पढ़ाने में?
2: बहुत ज़्यादा। जब हम पढ़ा रहे हैं कक्षा में, हम देखते हैं कि बच्चों को अगर हम, मेरे हिसाब से अगर हिंदी सिखाना है, जब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ सबसे पहले, तो उनको हिंदी सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक्शन के थ्रू, हाथ को या फिर चेहरे के एक्सप्रेशन से उनको बहुत कुछ समझ में आने लगता है धीरे धीरे। ऐसे फिर वो समझ जाता है कि अच्छा आप ये बोलना चाह रही हो, वो मुझे ट्रांसलेट करके क्लियर में बता देती है। फिर पढ़ाते पढ़ाते अगर हम सिर्फ एक ही लय में जाएं ना, जैसे फ्लैट मोड पर जा रहे हैं, तो ऐसा एक समय आ जाता है कि कक्षा उबाऊ हो जाता है। बच्चे, एक तो हिंदी ऐसा है कि सिर्फ इस कक्षा में पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर उनको इस यह माहौल मिलता नहीं है, तो अगर कक्षा उबाऊ है तो वो पढ़ेंगे नहीं। तो बीच बीच में ऐसा कुछ करना पड़ता है कि उनको ना बहुत दिलचस्पी हो जाए भाषा के साथ, उनको जो अट्रैक्शन हो जाए कि हाँ मुझे उस कक्षा में जाना है, भाग के आए कक्षा में। फिर जब हम पाठ भी पढ़ाते हैं, कभी वार्तालाप हो गया, डायलॉग्स हैं बोलने का या फिर कहानी है, तो उसको हम मैं उनको सिखाती हूँ कि तुम इसको कैसे बोल सकते हो भावनाओं के साथ। कभी क्रोधित तरीके से बोलना है या फिर उसको प्यार से बोलना है या फिर जोर से बोलना है, धीरे से बोलना है, कोशिश तो करो थोड़ा सा। और उनको बहुत अच्छा लगता है कि कुछ अलग करने को मिल रहा है कक्षा में, कुछ अलग बोलने को मिल रहा है। कभी कभी मैं भी एक्ट करके सिखाती हूँ उनको, या फिर हम कहानी जब सुनाते हैं, एक कहानी है पाठ का, उसको अगर हम बस सिंपल तरीके से पढ़ा ले, समझा दिया ये शब्द हैं, पढ़ लिया, तो हाँ हर चीज़ की तरह उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन उस कहानी को हम कहानी के जैसे उनको सिखाएं, तो आवाज़ बदल कर या फिर एक्टिंग करके, तो उनको दिलचस्पी होती है और उनको वो याद भी रहता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ पुस्तक में नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ देखा है। तो दोनों को मिलाकर उनके उनके दिमाग में वो बैठ जाता है और बहुत उनको दिलचस्पी होती है कि मैं और कुछ पढ़ूँ और कुछ जानूँ, अन्यथा आपको पता है बच्चे भागने लग गए आजकल हिंदी से।
1: ये इस प्रश्न को लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। अभी आपने कहा कि बच्चे याद आते हैं जब हम एक्टिंग करते हैं, आवाज़ को बदलते हैं, क्योंकि दिमाग में चित्र बैठता है, शब्द नहीं बैठता।
2: मैंने मेरे पास ऐसी पेरेंट्स भी आए, माता पिता ने बताया कि आपको पता है मैंने अब घर पर अचानक मेरा बच्चा ना कुछ हिंदी में कुछ ना कुछ बोलने लग गया, पता नहीं क्या करने लग गया। जब पूछा तो बोलते हैं बहन जी करती है ऐसी, तो बहन जी का किरदार घर पर चला जाता है कभी कभी। तो उनको अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं फिर उस माध्यम से, एक्टिंग जो मैं करती हूँ वो वॉक जाकर घर पर करते हैं सेम, और कभी अपने टेडी बेयर्स को पढ़ाते हैं।
1: बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है नाटक के ऊपर है, नाटक पर आधारित, लेकिन जिस माध्यम से, जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वह हिंदी है
2: जी।
1: आप हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को आप हिंदी पढ़ाते हैं। आजकल हमारी समस्या चल रही है कि हर एक स्कूल में, सभी नहीं बल्कि अब बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे बच्चे जो है माँ बाप से, अभिभावक से लेटर, पत्र लिखवाते हैं कि अभी हम हिंदी नहीं करेंगे। तो आप एक अध्यापिका है, इस समस्या का सामना आप कैसे करती है?
2: जब मुझे भी, मैंने देखा ये बहुत बार हो रहा है, मैंने बहुत लोगों से भी सुना है, तो मुझे लगता है सबसे पहले ये मेरे ऊपर, मेरे स्वयं के ऊपर आता है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि अगर मेरा
1: टीचर होने के नाते
2: जी, एज ए टीचर, अगर मैं पढ़ाते हुए अगर मैं अलग अलग तरीकों का प्रयोग करती हूँ, तो मेरे बच्चे हिंदी क्यों छोड़ेंगे? छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि मैंने उनको ऐसा ढाल दिया कि वो छोड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं मुझसे। जैसे कि मैं आजकल के बच्चों का जीवन, उनका मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, और लैपटॉप मोबाइल गेमिंग यह सब कुछ हो गया। अगर मैं इसी के माध्यम से उनको सिखाना शुरू करूँ, लैपटॉप पर चित्र दिखा दिए, हमने गेम्स के थ्रू सिखाना शुरू कर दिया, हमने वीडियोस दिखा दिया जो कार्टून वाली चीज़ें उनको दिखा दिखा कर हम पढ़ाना शुरू कर दें, तो हम उनके जीवन का एक हिस्सा कक्षा में ला रहे हैं, तो उनको दिलचस्पी तो होती है। फिर पढ़ाने का जो तरीके होते हैं हमको अलग अलग तरीके लेने पड़ते हैं। एक पाठशाला में जाए तो तरीका अलग हो सकता है, दूसरे में जाएंगे तो हम वही उसी प्रकार नहीं पढ़ा सकेंगे। हमको देखना होगा कि वहाँ के बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है, उस पर फिर आप काम करो और उसमें आप खुद को ढाल दो। और उन बच्चों को एक मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना, बच्चे प्यार के प्यासे होते हैं, तो आप प्यार से उनको सिखाओ और आकर्षित करो अपनी कक्षा की ओर। तो जब एक बार आकर्षित कर लिया ना, तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे। हाँ, एक दो ये आ सकते हैं, एक दो बच्चों का कि बोलते हैं उनको भरोसा नहीं है कि हम परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन परीक्षा ना दे लेकिन कक्षा में बैठकर वे सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर मैं अपने आप को बदल दूं तो बच्चे भागेंगे नहीं। उसके बाद हम अभिभावकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि हमारे बाद बच्चे उनका ही सुनेंगे और वे घर में है, तो वे जब बच्चों को थोड़ा और प्रोत्साहित करेंगे, हमने जो सिखाया वो लोग थोड़ा घर पर देखेंगे कि क्या सीखा, थोड़ा बताओ हमको, हमको सिखाओ। तो ऐसा करते करते हम देख सकते कि बच्चा नहीं भागेगा, हिंदी नहीं छोड़ेगा, लेकिन कार्य मुझे लगता है मैं स्वयं को मेरे लिए ऐसा है कि मुझसे शुरू होना चाहिए।
1: मतलब एज ए टीचर आप समझते हैं कि पहली जिम्मेदारी आपकी होती है।
2: जी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों ने बोला है कि हमको हिंदी नहीं आती है, लेकिन हमारे बच्चों को, मैं अपने बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे, क्या करूँ मैं, क्योंकि मैंने छठी कक्षा तक या फिर बहुत पहले किया तो मुझे नहीं याद आता है, बहुत कुछ नहीं पता है मुझे। तो मैं यही बोलती हूँ कि बच्चे ने जो सीखा कक्षा में उसको बोल कि वो आपको सिखाएं, तो उसके साथ उसका रिवीजन हो गया और आपने कुछ नया सीख लिया, तो काम भी हो जाता है ना।
1: बहुत ही खासतौर पर अगर आप प्राथमिक या पाठशालाओं के बच्चों के साथ आप काम करिए तो आप जड़ के साथ काम करें
2: जी,
1: और आगे जाकर यही जड़ पेड़ को फलित फूलित करेगा, पेड़ को बड़ा और करेगी
2: जी।
1: बहुत ही सुंदर। आप मंजुला जी, आप नाटक के साथ जुड़ी हुई है, आप अध्यापन के साथ जुड़ी हुई है, आपने नाटक में भाग लिया, फिल्मों में आपको मौका मिला है?
2: नहीं, फिल्मों में नहीं, ये भी
1: मतलब लोकल फिल्म से
2: नहीं, नहीं, वो नहीं अभी हुआ।
1: और आपकी भावी योजना हम के बारे में हम जानना चाहेंगे, जो आने वाले होते हैं या फिर कोई नाटक आ रहा है जहाँ पे आप खेलने वाले होते हैं?
2: अभी तो नहीं है, लेकिन शोज में शायद भाग लेंगे। अभी ये सब शोज आएंगे, गणेश चतुर्थी आ रही है, फिर दुर्गा पूजा भी आएगी, तो शोज में भाग लेते रहते हैं। कुछ सालों से, दो साल मैंने गणेश जी का रोल किया था, पूरा मास्क वास पहन के, तो मुझे वो बहुत पसंद आया था, तो शायद फिर से अभी इस साल जाऊंगी।
1: मतलब ज़्यादातर आप पुरुषों का रोल करते हैं?
2: नहीं, दोनों करते हैं, लेकिन जो पुरुष का
1: क्योंकि आपने कहा कि आपने ऋषि का रोल किया, आपने गणेश का रोल किया, एक बार आपने माँ का रोल किया।
2: नहीं, माँ का रोल बहुत नाटकों में किया, जब कॉम्पिटिशन रहते हैं तो बहुत कॉम्पिटिशन में गई हूँ, माँ का रोल, बहन का रोल ऐसा, लेकिन शोज में मैंने पुरुषों का रोल अच्छा बहुत किया। शोज में अलग बात होती है, आप कर सकते हो, कंपटीशन में इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बेहतर है लड़के लड़के का ही काम कर ले।
1: अच्छा, पुरुष बनना कठिन होता है? लगे आप पूछ लेते
2: नहीं, नहीं लगता है मुझे, क्योंकि
1: आराम से केयरफ्री
2: बस कर लो, पता नहीं

0: चलता है दूसरों को ना,
1: बोल लो लाइन है बोल दिया।
0: मुझे लगता है पुरुषों को कठिनाई होगी हिस्ट्री बनना, लेकिन हिस्ट्री के लिए नहीं।
1: हाँ, शायद हो सकता है, हमको ऐसा मौका नहीं मिला। अगर मौका मिले तो बहुत, हाँ बहुत कोशिश जरूर करेंगे और बहुत काम करना पड़ेगा इसके बारे में। तो मंजुला जी, आप आई है इस कार्यक्रम में और आपने अपने जीवन के बारे में जो अनुभव है हमसे साझा किया है, हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं जो नौजवान या फिर जो भी नाटक में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए दो शब्द आप कहना चाहेंगे?
0: मैं ये कहूँगी, जीवन में अगर आपको मौका मिल रहा है मंच पर जाने के लिए, जाओ और उसका आनंद लो, क्योंकि वह एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको सच्ची का आनंद मिलेगा और आपको अपने आप में विश्वास, आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपको फिर समाज, कल को हमारे जो नौजवान हैं उनको नौकरी करनी है, बहुत कुछ करना है जीवन में, तो उसके लिए भरोसा चाहिए। अब आप मंच पर जाकर जब आपने इतने लोगों का सामना कर लिया ना, तो बाकी फिर डर तो रहेगा ही नहीं। और एक बात बताना चाहूँगी कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत नौजवान गलत रास्तों पर जा रहे हैं, वहाँ जाने आपको वो किसी खुशी को ढूंढ रहे हैं या फिर अपने गम को भुलाने जा रहे हैं, उसको आप नाटक में ढाल दीजिए। नाटक में मंच पर जाकर आप रो लो या हंस लो, आपका गम पूरा निकल जाएगा और साथ में खुशी भी मिल जाएगी। और हिंदी से जुड़ी हूँ तो मैं बोलूँगी कि नाटक करते करते बहुत बच्चों ने हिंदी में, हिंदी बोलना बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो अभिभावकों को ये बोलूँगी अपने बच्चों को आप भेजो, नाटक करवाओ। और हमारे सितोहर भाइयों का तो एक बहुत अच्छा ग्रुप भी है, टोली है, आप इनको, इनसे संपर्क भी रख सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा।
1: बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सुंदर कोट है अंग्रेजी में नाटक के बारे में, कहते हैं कि we must all do theater to find out who we truly are and to discover who we can become। बहुत ही सुंदर है। और आपने एक शब्द का प्रयोग किया, भरोसा, ये बस बैठ गया है दिमाग में, भरोसा होना चाहिए। किसी चीज, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो बस अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने काम पर भरोसा रखिए, कामयाबी बस आ ही जाएगा। तो मंजुला जी, इस सुंदर भेंट वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया। हाँ, अगर आप भी आना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, जरूर हमें लिखिएगा या फिर मेल लिखीजिए, फिर सोशल मीडिया पर हम तो है ही, आप लोग भेज दीजिए का एक मैसेज तो हम फोन कर लेंगे जरूर। अभी के लिए आपको छोड़े जाएंगे कि प्यारा सा, प्यारे से गाने के साथ, अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे नाट्यकला कार्यक्रम में।
2: नाट्यकला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्यकला।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदय। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब बैंक कुछ मामलों में जांच के लिए जानकारियां दे सकेंगे। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का ऐलान किया। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किए बिना कुछ जरूरी जानकारियां एफसीसी को सौंप सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को एक समान बनाना है, ताकि पिछले अप्रैल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में किए गए बदलाव के बाद पैदा हुई कानूनी विसंगति या आपसी टकराव को सुधारा जा सके। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक नया कदम उठाया गया है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल में कई ऐसे नए नियम लाए गए हैं जिनका उद्देश्य पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही इसमें हिंसा के उन रूपों को भी पहचान दी गई है जिन्हें पकड़ना अक्सर मुश्किल होता है। इन नए नियमों में मानसिक और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एम्पावर और रेज ब्रेव गर्ल्स इस नए कानून का स्वागत कर रही हैं। यह कानून ऐसी घरेलू हिंसा पर भी ध्यान देगा जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। राष्ट्रीय सभा ने इस मंगलवार को बिना किसी सुधार के अप्रोप्रिएशन बिल को स्वीकृति दे दी है, जिससे बजट 2026-2027 को अंतिम रूप मिल गया है। प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा प्रमुख रूप से है और इस फूड सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना, साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करना है। और विदेशी खबरें भारती बिहारी के साथ।
2: कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार कतर और पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग अलग बैठकें संपन्न की, जिनमें 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। गुरुवार को एक एक्स्ट पोस्ट में कतर के प्रधानमंत्री ने सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वार्ता शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित थी। यह ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम यात्रा के बाद जारी रहेगी। थाईलैंड के पूर्वी प्रांत में 11 वर्षीय एक लड़के ने तीर्थ यात्रा पर निकले भिक्षुओं में के एक समूह पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में कम 8 भिक्षुओं की मौत हो गई। खबरों के अनुसार 5 भिक्षुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा 14 अन्य घायल भिक्षुओं और को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। टेंपल रोड आमोरी में 82 साल के 82 years old के श्री मौदे मुदेली वायापुरी, जिन्हें सब लोग राजू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती माया वायापुरी के घर टेंपल रोड आमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM। सिमिचिया रोड प्लेमायो में 36 years old के श्री विकेश बुधन, जिन्हें सब लोग इशली के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार 4 जुलाई दिन के 10 बजे उनकी मां श्रीमती संध्या गाबूजी के घर सिमिचिया रोड प्रेमायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 4th of July 2026 at 10 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
3: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
5: Your kind of music all day all night right here on your one and only station

आप सभी को नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सबों को तहे दिल से स्वागत हम करते हैं और ये प्रोग्राम आप रेडियो मॉरिशस से मतलब सीधा ये प्रोग्राम चल रहा है और ये भी याद दिला देते हैं कि ये टेलीविज़न के तीसरे चैनल पर यानी कि टीवी मतलब आप देख सकते हैं ये लाइव प्रोग्राम टीवी थ्री पर। तो प्रिय दर्शकन और प्रिय श्रोता, आज की चर्चा में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हुए हमारे आज के मिसाल दे रहे हैं टेक्निक पर काद्या को दादीन। प्रोडक्शन सहायिका हैं दीपशिखा और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं रितेश महावीर। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी जो वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ ऐसा एक विषय है जो है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास। तो जैसे आप सब जानते हैं, बदलता मौसम, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं, आज भर पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बन गया है। आप ज़रूर हमारे साथ ये बात ज़रूर मुझसे सहमत ज़रूर होंगे।

0: तो ऐसे समय में ये समझना बेहद बेहद ज़रूरी है कि हम प्रकृति की रक्षा कैसे करें। तो आज इसी विषय को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जैसे आप देख ही रहे हैं स्टूडियो में उपस्थित है एक सम्मानित अतिथि श्री हेमंत राम गोविंद जी, जो भूगोल के प्राध्यापक होने के साथ साथ मॉरिशस विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर हैं। तो श्री हेमंत जी नमस्कार और स्वागत है आज की चर्चा प्रोग्राम में।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार,
0: धन्यवाद। जैसे कि हमने कहा कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, हम क्लाइमेट चेंज, इस सब पर पर्यावरण से संबंधित चर्चा करेंगे। आप एक ज्योग्राफर हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, ये क्या है आपके देखने में?
1: क्लाइमेट चेंज समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट मतलब कैसे, हम कह रहे हैं कि मॉरिशस में क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, गर्मी का समय आता है, थोड़ा अभी ठंड पड़ रहा है तो बारिश, गर्मी में बारिश ज़्यादा होता है, ये ठंड समय में कम बारिश होता है, और मतलब कितना बारिश होता है एवरेज हर साल, कितने साल से वो लगभग बराबर था, लगभग मतलब एक यूनिफॉर्मिटी, एक कंटिन्यूटी था, जो जैसे क्लाइमेट हमारा था वैसे ही पहले था, मतलब 100 बरिस 200 बरिस 300 बरिस पहले, तो वो बदलता नहीं था। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है, ये कन्फर्म है कि क्लाइमेट बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस है, साइक्लोन में डिस्टर्बेंस है, टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस है, बारिश में डिस्टर्बेंस है। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी हमारा जो बारिश है बहुत कैसे बोलते हैं, बहुत डेफिसिट है, कम बारिश हुआ है, महोबा में मेरे ख्याल से लगभग 40% पानी है, और अभी कुछ हो सकता है कि ज़्यादा ठंड भी होगा। और नॉर्मली हर साल की तरह ये विंटर नहीं है मॉरिशस में, आप सहमत हो गए मेरे साथ कि विंटर में टिपिकल जो समय ये वेदर होता है वो मतलब विंडी रहता है, एंटीसाइक्लोन्स रहता है, छोटा छोटा बारिश।
0: तो क्या यही है ये चेंज, ये बदलाव इसी वजह से?
1: अभी दो सप्ताह, एक 10 दिन पहले बहुत बड़ा बारिश हुआ था कौली मास में, वहाँ पानी एकदम, दिस इज मतलब ये नॉर्मल नहीं है। तो ये बदलाव हो गया है, जो नॉर्मल क्लाइमेट था, जो नॉर्मल ऑब्जर्वेबल फिनोमिना था, वो बदलाव हो गया है। कैसे बदलाव हो गया है, एक बहुत बड़ा कारण है जो कहते हैं।
0: अच्छा, तो इस के कारण पर आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये इसमें अंतर है, डिफरेंस है क्या?
1: क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण।
0: अच्छा,
1: मतलब मैं स्पष्ट कर रहा हूँ उसको। देखो हमारे जो पृथ्वी है लगभग गोल है, और ऐसे हमें सोचना चाहिए कि उस पर एक कंबल है, जैसे मूलतों बहते हैं उसके ऊपर एक कंबल है, तो वो कंबल वो यहाँ धरती से एक 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर की ऊंचा तक ये कंबल है। जितना क्लाइमेट का फिनोमिना है, साइक्लोन, एंटीसाइक्लोन, मतलब हरिकेन, सब कुछ यहीं पर होता है, ये इस भाग में जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ जब गर्मी आता है सन से, सूर्य से, तो जब गर्मी आता है धरती पर तो लगभग सब वापस चला जाता है, थोड़ा सा रहता है, वो थोड़ा सा गर्मी वो इसेंशियल है, मतलब जीव जंतु के लिए अगर वो थोड़ा सा इसेंशियल, थोड़ा सा वो जो गर्मी नहीं होता तो जीव जंतु नहीं रहते इस धरती पर, लाइफ वुडंट हैव बीन पॉसिबल। तो उसको कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब सूर्य का वो जो किरण आते हैं हमारे धरती पर वो गर्मी फैलाते हैं और लगभग सब वापस चला जाता है, लेकिन थोड़ा सा रह जाता है ताकि हमारे धरती पर सब कुछ जी सके।
0: ओके।

0: मतलब अब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इसका मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब वो जो कंबल है वो ज़्यादा जाड़ा हो गया है, भरा हो गया है. वो जब वो सूर्य से वो जो किरण आ रहा है वो जितना उसको वापस जाना चाहिए था एटमॉस्फेयर में वो जा नहीं रहा है,
1: बढ़ रहा है,
0: बढ़ रहा है, यहीं पर वो थम गया है.
1: ओके.
0: यहीं पर थम गया है वो. तो इसको कहते हैं वो जो थोड़ा सा चाहिए था हमेशा उसको कहते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ. और ये जो एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये मनुष्य के कारण, मनुष्य के एक्टिविटी के कारण ये एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ज़्यादा वो जो गर्मी है वो थम गया है अपना, वो जो एटमॉस्फेयर है 0 to 10,000 मीटर्स.
1: मतलब आपका कहना कि कुछ हम लोगों यानी कि मानव जीवन के कुछ रेस्पॉन्सिबल है, उनकी जिम्मेदारी
0: 100% मानव रेस्पॉन्सिबल है. इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज है अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन साइंस कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये जो अपना डोनाल्ड ट्रंप है ये प्रेसिडेंट यूएसए, वो कह रहे थे कि ये दिस कौन जॉब, ये झूठा है. अभी एक 6-7 महीना के पहले वो कहा इंटरनेशनल न्यूज़ में कि ये झूठा, ये नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ है. कैसे हुआ है? देखो जितना कुछ अभी हम देख रहे हैं दुनिया में, बड़ा गाड़ी, बड़ा एयरप्लेन, बहुत बड़ा अर्बन एरियाज, सिटीज़, मेगालोपोलिस, मेट्रोपोलिस, टेक्नोलॉजी, सब ये सिर्फ 275 साल का पुराना है. उससे पहले कुछ नहीं था. एक बहुत बड़ा इवेंट आया था मनुष्य के हिस्ट्री में, मतलब उसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उससे ये आया इंग्लैंड में 1750 से लगभग शुरू हुआ और पूरा यूरोप में फैला और अभी दुनिया भर में कहीं ना कहीं मशीन से सब कुछ बनाते हैं. उससे पहले सब कुछ हाथ से बनाया हुआ था, एवरीथिंग वॉज हैंडमेड. हमने एनर्जी शुरू किया यूज़ करने के लिए कोल
1: जी,
0: और मास प्रोडक्शन बहुत तादाद में कुछ बनाने के लिए. तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ साइंस के कारण, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के कारण. साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ इसको जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट या इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के कारण, द एज ऑफ रीजन. तो इतना साइंस फैल गया, साइंस के कारण लोग ज़्यादा जीते हैं, बहुत सुविधा पैदा हुआ है, बहुत मेडिसिन सब कुछ. इतना साइंस प्रोग्रेस किया कि अभी ऐसा एक सिचुएशन चला आया है कि हमारे एग्जिस्टेंस ही बहुत क्वेश्चनेबल है. अच्छा. क्या हम जी सकेंगे या नहीं जी सकेंगे?
1: बिल्कुल.
0: ये प्रश्न मैं और एक बात कह रहा हूँ, ये कैसे मनुष्य के कारण हुआ है? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एनर्जी.
1: वही तो. तो हमने के देश में डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है, ये तो बात है. तो जितना बीस है लोटो कामियों वो सब चलेला, तो ये सब तो लिसेंस और डीजल के बिना नहीं सब चली. तो एक सोल्यूशन का है,
0: हम थोड़ा सा और ज्यादा बोला भी कर बारे में. शुरू कर ली सर सौभंतिया से, उससे शुरू हुआ कोल से. उसके बाद कोल मतलब जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद 1850 लगभग तब आया पेट्रोल जैसे. अब गाड़ी का समय आया 20th century में. तो अभी के समय में अभी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है 90% बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम 90%. अभी देखेंगे कितना एयरप्लेन्स घूम रहा है दुनिया भर में.
1: हाँ.
0: 10,000 to 20,000 घूमते रहे. कितना गाड़ी चल रहा है? 50 million to 100 million सब पेट्रोल से. ओके. मॉरिशस में अपना जो एनर्जी है ज़्यादा करके डीजल से. तो इसका अभी तक वो कैसे बोलते हैं, उसका अल्टरनेटिव सोर्स नहीं आया और हम यूज़ करते रहते हैं और क्या क्या हो रहा है?

0: है कि बहुत जल्द ये परिवर्तन हो रहा है।
1: तो आप जैसे एक ज्योग्राफर है और रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आपके हिसाब से कुछ सॉल्यूशन है इस पर?
0: मैं आपको बताऊं, जब मैं इतना ये एग्जांपल दिया कितना हम डिपेंडेंट है ये फॉसिल फ्यूल पर, कितना ये जो फॉसिल फ्यूल लिसेंस डीजल ये सब, ये तो भगवान ने बहुत नीचे धरती में रखी थी, हमने उसको निकाल के जलाया। उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन है, वो कार्बन जब मिक्स होता है ऑक्सीजन से तब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बुरा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके कारण मैंने कभी कहा कि टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ अभी क्लाइमेट चेंज से पहले 14 डिग्री था अप्रोक्सीमेटली, अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन चला आया है, कैसे बोलते हैं क्रियोल में, दिपास लिमिट, 1.5 डिग्रीज इंक्रीज। सोच रहे थे 20-25 साल पहले कि 2100 में आएगा, लेकिन लेकिन द शॉकिंग न्यूज इज 2025 में 1.5 डिग्री चला आया है। अब ये क्रिटिकल, मतलब देखो क्या हो रहा है फ्रांस में, पिछले सप्ताह से लगभग 1200 लोग मारे गए हैं गर्मी के कारण, सेम सिचुएशन 600-700 जर्मनी में। तो एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, ये दिस इज अ प्रूफ ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब आपने पूछा कि कैसे क्या करेंगे, तो अल्टरनेटिव नहीं है, और सभी लोग वो घूमने जाते हैं प्लेन में, लग्जरी गुड्स चाहिए तो कंज्यूम करते हैं, तो कहाँ से वो एनर्जी आएगा? ये अल्टरनेटिव एनर्जी है लेकिन बहुत कम, ये 90% जो हमारा यूज है फॉसिल फ्यूल का, कोई मिरेकल होएगा तब रिप्लेसमेंट आएगा। और सब लोग कहते हैं, कॉन्फ्रेंस होता ही रहता है हर साल, अभी तुर्की में कॉन्फ्रेंस होगा सितंबर या अक्टूबर में, हम ये करेंगे वो करेंगे,
1: वही तो,
0: लेकिन कुछ कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो लड़ाई हो रहा है, कितना बम फट रहा है, कितना CO2 जा रहा है एटमोसफियर में, नोबडी इज केयरिंग। ये दुख की बात है। और हम एक छोटा सा टापू है, टापू में रहते हैं मॉरिशस,
1: हमारे देश तो बहुत छोटा
0: और ऐसा कि एक पत्थर है बीच पानी में है? और हमारे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, लेकिन सबसे हमारे लिए वो जो सी लेवल जो है ना, देखो हम अपना मोस्ट ऑफ द कैसे बोलते हैं, अपना जो ज़्यादा करके अपना जो सी साइड है वो धोआ गया है, वो पानी चढ़ चढ़ कर वो इरोजन हो रहा है, और हमारे जो रेट ऑफ कैसे बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीज हर साल
1: बढ़ी है,
0: ट्वाइस द एवरेज ऑफ द वर्ल्ड,
1: दुगुना
0: मतलब वर्ल्ड का एवरेज होगा अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीमीटर्स, अभी मॉरिशस में लगभग 6 मिलीमीटर्स हो गया। मैं ये जितना इंफॉर्मेशन मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, ये तो एक्सपर्ट्स का लिखा हुआ है, ये पब्लिश्ड है इंफॉर्मेशन, मेरे यहाँ तो लैबोरेटरी नहीं है, मैं पढ़ के देख रहा हूँ और एवरी ईयर। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिटिकल स्टेज आ गया है वो टप गया है 2025 से। अब देखो मैं एक अनुभव दे रहा हूँ आपको, मॉरिशस में ये फ्लैश फ्लड हुआ है
1: जी,
0: हो सकता है 2016 में, अभी कह रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि अभी एलनीनो है। एलनीनो एक वेरी सिंपल टर्म्स में एक नेचुरल, कैसे हम अभी तभी कह रहे थे कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये होता है हर 2 साल से 7 साल या 8 साल एलनीनो होता है। लेकिन अभी जब एलनीनो हो रहा है, देखो वो जो मानसून है इंडिया में, मानसून जब हर साल जब मानसून का बारिश हो रहा है, मानसून नहीं आया। अभी मॉरिशस में 2016 में मुझे याद है डेमिल सेज, तब एलनीनो था और एक साइक्लोन आया था फौताला, उस ये दैट इज़ अ बिगेस्ट साइक्लोन एवर रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ मेट्रोलॉजी 2016 में फौताला, उसका स्पीड 300 किलोमीटर्स पर आवर।
1: तो ये यहाँ मॉरिशस में नहीं, वो तो दूसरे
0: नहीं नहीं, यो इंडियन ओशन में, लेकिन आया नहीं लेकिन अभी कोइंसिडेंस क्या है कि ऐसे कि कोई किसी को डायबिटीज है उसको खूब चीनी दे रहे हो खाने

0: के लिए क्या होगा? तो अभी एल नीनो है और 10 साल बाद देखो अभी एल नीनो है, जब साइक्लोनिक सीजन आएगा तो एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर आएगा।
1: तो यही देखा गया है, देखते हैं जाके समंदर में बड़ा बाढ़ उतर आवेला, जंगल में गर्मी के कारण आग भी लग जाला, तो एक कारण कौन चीज सकेला वो ही
0: ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जब वो हीट जो है, जो सूर्य से आ रहा है वो जो हीट, वो बाहर नहीं जा रहा है, वो एक्युमुलेट होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो काफ़ी उसका ये कैसे कहते हैं, उसका सॉल्यूशंस है। पहला सॉल्यूशन है, वी हैव टू स्टॉप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, एक। दूसरा जो है, हमें खूब ट्रीज प्लांट करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, ग्रीन, ताकि वो अब्सॉर्ब करे, उसे उदे अब्सॉर्ब करे। ये अभी तो जो हमारा जो कैसे कहते हैं वो फेफड़ा है जो धरती का, अमेजन फॉरेस्ट बहुत कम होते जा रहा है, लगभग एक ग्रासलैंड हो जा रहा है वो। तो अभी इतना कॉन्फ्रेंस में मुझे पता है वो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कितना हुआ है, लेकिन कैसे जैसे मैं आपको बताया, कोई साथ में डिसीजन नहीं ले रहा है कि एक ब्रेक डालें ये फॉसिल फ्यूल्स पर।
1: और इसके अलावा पर्यावरण पर भी काफ़ी ऐसी चर्चा में आया कि हम लोगों को प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, ये कहाँ तक सही और कहाँ
0: प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक ये पेट्रोलियम से ही बना हुआ है, हजारों साल लगता है उसको डिग्रेड होने के लिए, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सिर्फ प्लास्टिक नहीं, हम जब प्लास्टिक की बात करते हैं तो क्या आता है, साक प्लास्टिक सैकॉन्सू, वो नहीं है, वो सही नहीं है। आप एक सुपरमार्केट में जाइए, कितना प्लास्टिक है, कितना प्लास्टिक बोतल, सब प्लास्टिक है, बहुत प्लास्टिक। एक गाड़ी में कितना प्लास्टिक है, बहुत प्लास्टिक। ओके, तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा उससे ज़्यादा बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा था बॉटल, बुते जैसे कहते हैं। ओके, तो मुझे याद है बहुत दिन पहले मैं एक जगह गया था इंडिया में, भारत में, ऊटी 2002 में, वहाँ पर उस समय प्लास्टिक का बैन था अभी तक। तो कितना प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, तो प्लास्टिक कंट्रीब्यूट होता है। और ऐसा बहुत से जगह है जहाँ पर वो समुद्र का प्लास्टिक पैसिफिक में इसे इकट्ठा होता है, वो देख लेना एक है, ये सब बनाया हुआ है। और लोगों का हैबिट है प्लास्टिक है फेंक दो, हमारे यहाँ नहीं चाहिए, तो ये सब बहुत समय लगता है डिग्रेड होने में।
1: तो श्रोताओं और दर्शकों से मांग करते हैं इस विषय पर, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, फिर क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, इस पर अगर आपके पास कोई विचार हो या कोई प्रश्न हो, बेझिझक 402-808-5 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं।

0: इस प्रोग्राम में आप लोगों का दोबारा स्वागत हम करते हैं और हमारे साथ हैं श्री हेमंत रामगोबिन जी जो एक मतलब भूगोल वेत्ता भी हैं, जैसे हम बोल रहे थे कि भूगोल के प्राध्यापक है और मॉरिशस विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके। तो हम इनसे बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमने के मॉरिस देश पे कैसे निपटावल जाए सकेला?
1: कैसे निपटावल जाए? देखा हमने के जैसे बोली है बिटवीन 20,000 टू कैसे 10,000 टू 20,000 एयरप्लेन्स, बिटवीन 50 मिलियन टू 100 मिलियन मोटर व्हीकल्स जो ये फॉसिल फ्यूल्स यूज करें, हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में है लेकिन बहुत कम है, 0.01%, नेग्लिजिबल। लेकिन हम बहुत बड़ा विक्टिम होंगे उसके।
0: तो कैसे?
1: कोई कुछ करेगा वो कर्म हम भरेंगे। वो कैसे? क्योंकि हम छोटा सा एक टापू है बीच समुद्र में। कैसे? जब मैंने कहा कि हाँ। ये
0: बहुत छोटा एक छोटा पत्थर जैसे है समंदर।
1: वो जो समुद्र का लेवल है राइज हो रहा है, हमारा टूरिज्म डिपेंड करता है ये बीचेस पर, बीचेस डिसअपीयर हो रहा है और बहुत लोगों को छोड़ना पड़ेगा जहाँ जहाँ समुद्र के बहुत एकदम नज़दीक रहे हैं। और पूरा ये जो एरिया है बोजितोम्बो से लेकर पॉइंट कानूनी पुस्लाफाइट ये बेलमो पालमो ट्रूडेलुस बहुत नज़दीक घर है समुद्र से। ओल्ड एज बहुत रिस्की हो गया है। मैंने अभी थोड़ा दिन पहले कुछ दिन पहले मैं फुतुओ बीच गया था, तो टूरिस्ट में एक छोटा सा एक होटल है, एकदम होटल मतलब एक रेस्टोरेंट था, वो तो टूट पड़ रहा है वो क्लाइमेट चेंज के कारण, मतलब वो या आटरीस। लेकिन ये जो है सिर्फ बीचेस पर नहीं है, हमारा रोज का जीवन पे। कैसे वो हमारे यहाँ वो जब फ्लैश फ्लड हुआ था किसी को पता नहीं था कि ये हो सकता है पृथ्वी में, इतना बारिश हो जाएगा इतना छोटा सा थोड़ा समय में। मैं एक

0: मैं एक फिगर आपको बताऊं, मेरे यहाँ पेपर पर है, अप्रैल 2021 में एक दिन में 24 आवर्स में बॉम्बू में 400 मिलीमीटर बारिश आया था। कैसे कहते हैं फौसे में, जीजा में भी इट वाज नेवर सीन। और पोर्ट लुइस में जब 2013 में 152 मिलीमीटर्स ऑफ रेन इन जस्ट 2 आवर्स। ये है एक्सट्रीम्स हुआ। अभी तभी मैं फौंताला का साइक्लोन का
1: जिक्र किया भी।
0: हाँ, तो फौंताला उसमें स्पीड था, मॉरिशस में आया नहीं, ये तो भगवान के शुक्र है, लेकिन बहुत बर्बादी होता। जब से ये ओलांदा गया है तब से,
1: हाँ, तब
0: साइक्लोन
1: से
0: बड़ा साइक्लोन नहीं आया है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट वी विल हैव ए साइक्लोन इज नियरली 1।
1: तो कहते हैं यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं शायद इस वजह से।
0: नहीं, मेरे ख्याल से अभी एक्शन लेना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा। पहले हम घर बनाते थे ये लकड़ी और आयरन शीट का, टोल का, उसके बाद हम घर बनाए बीतों का साइक्लोन के कारण। तब जब घर बनाते थे तो मेटल का ओपनिंग्स डालते थे। अब जब से वो लामोद आया है एल्यूमिनियम का ओपनिंग, साइक्लोन आया नहीं है, पता नहीं क्या होगा। बड़ा बड़ा प्लेन, बड़ा बड़ा पानो, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इज इट साइक्लोन रेजिस्टेंट? ये सब क्वेश्चंस है। तो एग्रीकल्चर पर, टूरिज्म पर, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारा स्वास्थ्य पर, अभी ये स्कूल नो स्कूल है, वो ये बच्चों के पढ़ाई पर।
1: अच्छा, मौसम के अनुमान करे के आजकल बहुत कठिन हो गल।
0: हाँ,
1: तो हमने के सब बतावे जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटमेंट कितना मदद पहुँचावेला।
0: हम एगो बात बोला, हम मेथियोलोग नहीं, हम जियोग्राफ हैं, लेकिन हम जानेला कैसे काम हुएला। जानेला एगो बहुत कॉमन फ्रेज कहते हैं मॉडल न्यूमेरिक। मॉडल न्यूमेरिक मतलब थ्योरीज फॉर्मूलाज। तो असलियत में जो मेट्रोलॉजी के काम करते हैं वो फिजिक्स के लोग हैं, फिजिक्स उसके बोल उसको वो एटमोस्फेरिक फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं। ओके, दीज आर बेसिकली लॉज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो बहुत दिन में वो सब फिजिकल लॉज बनाया गया है, ये सब मॉडल न्यूमेरिक बहुत समय से, रिसर्च से, अनुभव से, एक्सपीरियंस से, ये जो जितना दुने हैं बातों से, मतलब ढेर जगह से सब लेकर तब मॉडल न्यूमेरिक बनाया गया। कि मॉरिशस में ये इम्प्रेशन है कि सिर्फ यहाँ पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन है, डेवलप्ड नेशंस में भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल न्यूमेरिक है जो जैसे कहते हैं वो काम नहीं आ रहा है। बहुत थोड़ा समय में ये नीचे का गर्म हवा उठकर कन्वेक्शन मतलब और बारिश बन जाता है, और बहुत थोड़ा कैसी जैसे मैं आपने कहा, आपको कहा कि 400 मिलीमीटर्स इन वन डे 24 आवर्स, दिस इज एन एक्सट्रीम। तो यही है साइक्लोन का ट्रैक भी। देखो एक दूसरा अनुभव मैं दे रहा हूँ। थोड़ा समय पहले एक साइक्लोन था फ्रेजी नाम करके। तो एक साइक्लोन का जन्म होता है और वो डिसिपेट भी हो जाता है। तो फ्रेजी का मतलब लाइफ टाइम नियरली 33 दिन था, 33 डेज। और एक बार जुजा में भी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वो चक्कर लगाता था चक्कर, किसी को समझ नहीं आ रहा था। वो जो मॉडल न्यूमेरिक है
1: नहीं पता उसका अनुमान,
0: कोई नहीं एक्सप्लेन, बिकॉज सब कुछ इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है सिर्फ वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। बहुत सी हीट है, कहाँ जाएगा वो बेचारा हीट? हमको ही मारेगा, हमारे जीवन ही को नाश करेगा। अभी देखो एक मैं सेंसेशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन सच्चाई बात है, ग्लोबल वार्मिंग में एक जो बहुत सच्चाई बात करते हैं और थोड़ा सा एक ग्रुप है जो थोड़ा मॉडरेट बात करते हैं। जब जो सच्चाई बात करते हैं, अभी देखो को किसी के सोच में नहीं है कि फ्रांस जैसे देश में हजारों लोग मारे जाएंगे गर्म के कारण। तो अभी तो 1.5 अभी पिछले साल ऐसा लगता है कि हो गया है, लेकिन अभी वो जो बहुत सच्चाई कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि द वर्स्ट सिनेरियो कैन बी एज अर्ली एज 2065, जबकि

0: 1.5 से 3 डिग्रीज हो जाएगा। अगर 1.5 से 3 डिग्रीज हो जाएगा 2065 में, तो 2100 में क्या होगा? तो कैसू देखो, एक बात मैं कर रहा हूँ, ये कहते हैं कि मॉरिशस एक पैराडाइज है, ओके? ये दुनिया ही, ये धरती माता ही एक पैराडाइज है।
1: और जब मॉरिशस की बात, डिफोरेस्टेशन कैसे सकेला कि मतलब हमने के एनवायरनमेंट क्या अफेक्ट करी?
0: देखा, डिफोरेस्टेशन मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जब आप ये फॉरेस्ट बोएंगे, ये पेड़ बोएंगे, तो उसमें एक कार्बन सिंक है, वो ले लेता है, वो जो
1: खींचता है, मतलब
0: खींचता है वो, मतलब लॉजिकली हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। बहुत ऐसे जगह है इस अबंडेंट फील्ड, मतलब हमें पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं,
1: डेवलपमेंट
0: के नाम पे यहाँ पर बहुत पेड़ था, लेकिन ये जो मेरे दिमाग में वो फिगर है, सिर्फ अबाउट 1% नेचुरल फॉरेस्ट रह गए हैं हमारे यहाँ, और बाकी सब काटा गया है सही। लेकिन मतलब अभी तक हमारे यहाँ ये चांस है, वी हैव द पॉसिबिलिटी टू रिक्यूपरेट, अब बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं कंज्यूमरिज्म के बारे में कहूँगा, कंज्यूमरिज्म कैसे हम रोज खरीदने जाते हैं, रोज खरीदने, वो खरीद जो सब कुछ जो खरीदते हैं, तो उसमें भी कितना एनर्जी फॉसिल फ्यूल जा रहा है बनाने के लिए, तो वो कंज्यूमरिज्म में एक ब्रेक लाना चाहिए। एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा फ्रेंडली बनाना चाहिए, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत अर्जेंसी है,
1: तो बहुत सारा काम मानव जीवन ही करना पड़ता है। ये जो
0: हाँ मैंने देखा कितना इरोजन हुआ है तो बीच में अभी, लेकिन मैंने बजट में देखा कि ये पैसा वो किया गया है कि वो उसको रोकें, लेकिन बहुत समय हो गया है कि ये बहुत आगे करना चाहिए था। वी आर लूजिंग टाइम। और कैसे मैंने कहा, ये क्लाइमेट एजेंसी हमारे हॉबीज में जितना कुछ फेंकते हैं, देखो मॉरिशस में सभी लोग समुद्र के तट पर जाते हैं, वो खाना पीना होता है सब छोड़ देते हैं, एवरीवेयर वी हैव दिस प्रॉब्लम। तो बहुत से एजुकेशन
1: भाई जी, आगे बढ़ने से पहले एक श्रोता को जरा सुन लेते हैं। दीपशिखा ने इशारा किया, हेलो
2: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी
2: प्रोफेसर जी, बहुत नमस्ते
0: जी।
2: आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ हमारे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में
1: जी।
2: देखिए, जब हम धार्मिक तौर पर जाएंगे, एक धारण से मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हमारे गृहस्थी में एक बच्चा पैदा हुआ।
0: हाँ जी।
2: अब तो समस्या हुई कि अब विछड़न हो गया, मतलब विभाजन, मतलब के तलाक हो गया, तो वो बच्चा इधर जाना चाहिए तो वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो पिताजी अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचते खींचते बच्चा तो मर जाएगा तो यही तो हो रहा है। मतलब अब दूसरी बात कहना चाहूंगा, देखिए जो प्राकृतिक आपदा हो रही है वो तो होकर रहेगा
1: जी,
2: अंत तो होना चाहिए एक दिन ना। तो जैसे हमारा जीवन है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे शारीरिक जो कमजोरियां है, हम बोलते शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख। आजकल विशेषकर मानसिक पाप बहुत हो रहे हैं, मन से हम सोचते हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया का मतलब कह रहा हूँ कम्युनिकेशन तो हम बढ़ गया है मोबाइल चाहिए, तो आज हम उसी वही बात हो रही है हमारे वातावरण में, कि हम जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन होता है, वो आकाश में चलता है, वो तो है ना, आदमी जो कुछ सोचता है वो सब वाइब्रेशन फैलता है आकाश में, और इसी कारण मतलब कि पाप बढ़ गए हैं, पाप जो है बढ़ गए हैं। पाप से ही ज्यादा दुख पैदा होता है। आदमी आजकल

0: पिता के नाम पर भी पाखंड बहुत करता है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है मगर उसको धन्यवाद तो करता नहीं, वो मांगता ही रहता है।
1: हाँ,
0: मांगता ही रहता है।
1: मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपका ये जो विचार आपने रखा है उसके बारे में एक बहुत साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से उसका आंसर दूंगा। मानते हैं?
2: अच्छा, आप फोन रख सकते हैं भाई जी।
1: तो आपने हिंदू धर्म के बारे में कहा, मैं कहता हूँ हिंदू धर्म जो है हमारे जो एनवायरनमेंट है एकदम पवित्र है। कैसे बोलते हैं, वो जो नदी का पानी है वो सेक्रेड है, पेड़ सेक्रेड है, आकाश सेक्रेड है,
2: परोपकार होते हैं। हाँ, हमारे जो पेड़, हमारी हाँ, जो नदियाँ, उनसे हम लोग
1: धरती को माता कहते हैं और सूर्य को भगवान कहते हैं। एवरीथिंग इज सेक्रेड इन हिंदुइज्म। और अभी देखेंगे हिस्ट्री में जितना हजारों साल से वहाँ लोग रहते थे भारत में, इतना कल्चर, इतना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो एनवायरमेंट का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है। मेरी माँ कहती थी गर्म पानी कभी धरती पर डायरेक्टली नहीं फेंकना, उनको चोट आती है। क्या होता है असलियत में, साइंटिफिकली वो जो जीव जंतु है धरती में वो मर जाएंगे। दैट इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, गर्म पानी, गर्म तेल, समझते हैं। और ऐसे रात को पेड़ नहीं काटना चाहिए, इतना ये लोगों में रिस्पेक्ट था ये एनवायरमेंट के लिए। पेड़ को, ये पेड़, समुद्र, हम समुद्र में जाके पूजा करते हैं, समुद्र को पूजते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक। ओके, और एक बात, ये जो महाशय कहते हैं, हाँ, ये जो अभी हम एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड मतलब लोग जहाँ अपने बिहेवियर को कंसिडर नहीं करते हैं, दे डोंट बिलीव इन गुड वैल्यूज, सेल्फिशनेस, ये सब इंडिविजुअलिज्म, सब खुद को खुद के ये विचार सिर्फ देखते हैं, लोगों को नहीं देखते हैं। तो ये सब हुआ है, कैसे होते हैं घोर कलयुग के समय में, तो ये सब होता है।
2: भाई साहब ने भी कहा कि हम लोग पूछते हैं पर मांगते हैं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ देना है तो वो ऊपर वाले तो देते ही रहेंगे।
1: तो
2: जब हम लोग ये ग्लोबल वार्मिंग के घटावे खातिर हमने के जितना जंगल बमोहिस में कैसे ये जंगल एडे करेला।
1: नहीं, जैसे तभी आप बोली है कि गांधी जो है वो CO2 जो है कि बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, तो उसको अब्सॉर्ब करता है। कैसे, पहले हमारे यहाँ मैनग्रोव था बहुत, मोंगलिए रोडेज में भी बहुत है, यहाँ पर मैंने देखा कि लेमोन के साइड में काफ़ी फिर से वो उसको गए, लेकिन अभी दुनिया भर में लगभग 50% मोंगलिए डिसअपीयर हो गए हैं, 50%। लेकिन अगर वो लगाएं फिर से, और मैं ऐसा मेरा विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हमने बहुत पेड़ काट कर ये घर बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, रास्ता बनाया है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि वो जब ब्रिटिश के राज में, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में वो पेड़ काटना मना था। मुझे थोड़ा थोड़ा ये मुझे आई हैव टू कंफर्म दिस, लेकिन पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है जीव जंतु के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और मेरे विचार से अगर कोई स्पेयर, मतलब कैसे बोलते हैं, तेरा वेद हो गए तो उसमें पेड़ लगाना चाहिए।
2: ओके, तो हमने के सबब बताओ एक कुछ उदाहरण अगर दे सके कि कौन कौन तरह की क्लीन एनर्जी बा।
1: क्लीन एनर्जी हमें यूज का इलाज है क्लीन एनर्जी। अभी देखवा कितना लोग के यहाँ सुफर सुले बा, क्लीन एनर्जी है। हमने के पानी नहीं पड़ता गर्म करे के कुओं से, एक से देगा तो क्लीन एनर्जी सोलर एनर्जी बाकर में सरकार बहुत बहुत दिन से स्कीम कर ले बा ताकि कुआ कमती से भी हो क्लीन एनर्जी बा। ये विंड एनर्जी उतना नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मरीज में वही क्लीन एनर्जी। और गाड़ी में क्लीन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक कार्स उसका वो जो ये
2: तो ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के इस्तेमाल करने से सचमुच फायदा होगा।
1: नहीं तो एक डिबेट है ये, देखो इलेक्ट्रिक कार्स मेरा यहाँ है प्लग इन कार, मतलब उसको प्लग करूंगा घर पे, नहीं तो एक प्लगिंग सेंटर में। लेकिन वो जो एनर्जी बन रहा है वो जो प्लगिंग सेंटर में है वो तो फॉसिल फ्यूल का एनर्जी है, तो वापस हुए बैक टू स्क्वायर वन। तो हमने

0: ये कैसे कहते हैं, ये जो मोटर व्हीकल्स है, एयरप्लेन्स है, यूज ऑफ कैसे बोलते हैं पेट्रोलियम, केरोसिन एंड सो ऑन, ये फ्रांसे में कहते हैं कास्टेट चिनोआ। क्या करेंगे, कैसी क्या करेंगे, क्या उपाय होगा, कैसा उपाय है, और हमारा जो एग्जिस्टेंस ही है इट इज एट स्टेक, इस क्वेश्चन
1: रिस्क
0: ही
1: पर
0: रहो,
1: हो।
0: तो पता नहीं क्या होगा, मोस्ट अनसर्टेन पीरियड। जैसे मैंने कहा वो थ्रेशोल्ड टप गया 2025, 1.5 डिग्रीज, मतलब अब से हमारा जीवन हर साल ज़्यादा कठिन होगा। अभी देखो पानी कम होगा, अभी मतलब वो जो आइस आइस शीट्स है ग्रीनलैंड में, आकी ग्रीनलैंड के आसपास अंटार्कटिका सब पिघल रहा है बहुत जोर से, और इतना ड्रॉट सीजन नहीं था, इतना सुखारी नहीं था। सुखारी नहीं होगा तो जीने के लिए दो कुछ दो चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन और पानी।
1: तो भाई हेमंत जी,
0: हाँ जी।
1: यदि मतलब अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य
0: बहुत कठिन होगा
1: कैसा हो सकता है?
0: भविष्य, मतलब फूड का प्रॉब्लम होगा, जैसे मैंने कहा पानी का प्रॉब्लम होगा, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज, अभी चिकनगुनिया मलेरिया हीट के कारण। मुझे याद है अभी अभी लगभग 5-6 साल पहले हमें ठंडी के समय में उतना ज़रूरत नहीं था वो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करने का, अभी ठंडी का ठंड का समय में भी मच्छर है। ये दिस इज़ अ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
1: तो एक दो श्रोता के क्वेश्चन भी है कि क्या जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह रोका जा सकता है?
0: हाँ, रोका जा सकता है, हम ही वी आर रेस्पॉन्सिबल। अभी जैसे कहा वो हम शुरू से वो जो कह रहे हैं कि देखो जलवायु परिवर्तन, हम फॉसिल फ्यूल्स बंद करेंगे कल से एकदम। याद है जब कोविड के समय में कह रहे, जब लॉकडाउन था, वो लोग दुनिया भर से कह रहे थे ए, समुद्र का पानी बहुत साफ हो गया, नदी का पानी बहुत साफ हो गया, हु इज़ अ पोल्यूटर, कौन पोल्यूट कर रहा है? एक फिलोसोफर कहा था मैन इज अ डर्टीएस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, डर्टीएस्ट। वो खुद खुद अपने से स्वच्छ हो जाएगा, तो कौन कौन कौन रोकेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन बना रहे हैं, बॉम्बर्स प्लेन बना रहे हैं, बॉम्ब बस्टर बना रहे हैं, सब कुछ, तो कैसा होगा? सब बिकॉज ऑफ वी आर सेल्फिश, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ खुद जिएंगे, किसी को जीने नहीं देंगे।
1: और एक श्रोता के प्रश्न है, घर में ऊर्जा की बचत कैसे करें?
0: हाँ, ये तो मेरा फील नहीं, लेकिन मैं करता हूँ ऊर्जा की बचत। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉनिक ये अप्लायंस ये मेंस पर है तो नई यूज़ हो रहा है तो उसको बुझा
1: ऑफ
0: देना
1: कर दो।
0: चाहिए, और एक और दूसरी बात, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैसे बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक स्टोव, तो गैस ज़्यादा बेनिफिशियल है। गैस भी उसका वो जो COD कंट्रीब्यूशन है 50% कम है ये वो जो फॉसिल फ्यूल से, और जब नहीं चाहिए तो नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अब हमें सोचना चाहिए कि इस समय में जैसे हम झकाचक दिवाली करते हैं वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ेगा अभी ज़्यादा, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया है, फिर से बढ़ेगा, ये वॉर है, वॉर सिचुएशन है, तो हमें बहुत सोचना चाहिए कि। और मैं काफ़ी समय पहले इस थिंकिंग के बारे में, जितना जो बल्ब ट्यूब सब कुछ था मेरे यहाँ, सब मैंने LED कहा, बल्ब दिया LED, मतलब लेस इलेक्ट्रिसिटी, और जब चाहिए तब यूज़ करने के यूज़ कर देते हैं, नहीं नहीं चाहिए तो उसको नहीं बारना चाहिए। तो हमारे जैसे जैसे हमारे यहाँ वो हमें सोचना चाहिए कि जब वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, हम अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं, अपना
1: तो
0: फ्यूचर
1: बच्चों
0: वेस्ट कर रहे हैं।
1: बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कैसे बनाया जाए?
0: ये छोटा से सिखाना चाहिए, छोटा ही से स्कूल में, अभी मुझे लगता है सीखते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक्शन में
1: नहीं,
0: उनको
1: स्कूल में
0: अवेयरनेस, क्योंकि
1: ज्यादा।
0: देखो मनुष्य का दिमाग एक ऐसा चलता है कि हमेशा उनको याद ही रहना चाहिए कि हमें नहीं फेंकना चाहिए कुछ लेकर। और एक बात मैंने मैंने नहीं कहा कि जब हम अपना कूड़ा सब
1: कट
0: कचरा
1: कट मतलब
0: फेंकते हैं तो उसको

0: उसमें ट्री करना चाहिए, बॉटल सेपरेट, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में, उनका एजुकेशन उतना नहीं है। मुझे यहाँ से काफ़ी नज़दीक एक जगह था, यहाँ मोका में, यहाँ पर ट्री दे देशे था, तो प्लास्टिक और ये एल्यूमिनियम एंड देन बॉटल और पेपर और नॉर्मल कचरा, तो क्या लोग कहते थे, और लोग और बहुत कोई जाकर वहाँ ट्री दे देशे करते, लेकिन वहाँ पर एक डिपोतवा बना दिया ना, तो उसके कारण वो उसको निकालना पड़ा। मतलब सबसे बड़ा काम है एजुकेशन, कैसे हम एजुकेट करें, कैसे छोटा से ही एजुकेट करें, छोटा से बड़े लोग। अब देखेंगे कभी कोई बड़े गाड़ी में जा रहा है लेकिन एक पूरा प्लास्टिक बैग फेंक दिया।
1: ये बहुत बढ़िया बात आपने कही अभी कि छोटे से ही उसको। और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं?
0: सबसे बड़ा संदेश ये है कि जैसे कि कोई माता पिता जब उनके बच्चे उनके सामने हैं तो सोचते हैं कि मेरा इच्छा है कि मेरे बच्चे एक दिन बहुत अच्छा से बड़ा इंसान बने, खूब पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। तो ये मतलब फ्यूचरिस्टिक, मतलब कैसे सोचते हैं कि फ्यूचर के बारे में। अभी का वो जो है एक कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। हम सबको, हमें रोज सोचना चाहिए कि कैसे मैं ये धरती माता को, मैं उसको संभालूँ, कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट। कुछ करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए।
1: अच्छा, इन सारी जानकारियों के लिए हेमंत राम गोविंद जी, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे अभी आपने कहा, प्रकृति तो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, जैसे आपने कहा स्वच्छ पानी, और सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: आइए सुनते हैं समाचार अभी उदय और रुद्रानी महावीर के साथ। नमस्कार।
6: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मॉरिशस टेलीकॉम ने साल 2025 में बहुत ही शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 13.5 बिलियन रुपए की रिकॉर्ड दर्ज की है। इसके साथ ही कंपनी ने मॉरिशस को अफ्रीका और एशिया के बीच एक डिजिटल हब बनाने के अपने बड़े लक्ष्य को और मजबूत किया है। वाकवा में टाकामाका ब्रिज को एक नया रूप दे दिया गया है। लगभग 60 साल पुराना ये पुल सब बहुत ही लंबे समय से ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बना हुआ था। इसकी हालत ऐसी थी कि विपरीत दिशाओं से आने वाली दो बसें भी एक साथ सुरक्षित तरीके से यहां से नहीं गुजर पाती थी। कई महीनों के काम के बाद इस नए और चौड़े किए गए पुल का उद्घाटन आज सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश द्वारा किया गया है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि बैंक कुछ मामलों में जांच के लिए जानकारियां दे सकेंगे। सरकार ने बजट 2026-2027 के भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का ऐलान किया। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किए बिना कुछ जरूरी जानकारियां FCC को सौंप सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को एक समान बनाना, ताकि पिछले अप्रैल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में किए गए बदलाव के बाद पैदा हुई कानूनी विसंगति या फिर आपसी टकराव को सुधारा जा सके। और विदेशी खबरें रुद्रानी मुहाबिया के साथ।
7: नमस्कार। रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया। इसके कारण भीषण विस्फोट हुए और की

0: कई घंटों तक हिलता रहा। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख ने बताया कि हमलों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हाल में हमले का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकाना का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद घालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक IAEA की पहुंच की खबरें पूरी तरह गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता।
1: तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सांकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक का अभय और रुद्रानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Mano.

0: 4:10 हो चुके हैं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूनम और ये थोड़ा सा प्रोग्राम अलग तरह का है। यहाँ पर चलते हैं सिर्फ 90s के वो गाने जिनको सिर्फ मोहब्बत होती है, जिनको मोहब्बत की खुशबू का एहसास आज भी जिंदा है, तो ये प्रोग्राम उनके लिए है। अगर आपको भी कभी कभी ना कभी मोहब्बत हुई होगी तो चलिए जुड़ जाते हैं हमारे साथ और हम चलाएंगे आपको 90s के गाने। और 90s के गाने वो गाने जहाँ सीता मतलब कहते हैं ना दिल के ऊपर वार होता है, तो ये गाने बस आपके पसंद और हमारी पसंद के हैं, तो चलो इंजॉय करते हैं इन गानों को।
1: RM3 Radio.

0: 4:17 हो चुके हैं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूनम और हम बात कर रहे हैं 90s के गानों की। क्या बात है उस ज़माने की। कुमार सानू की आवाज़ में अगर उन्होंने इम्तिहान मूवी में जो गाना गाया था, कहते हैं वो इतने प्यार भरे गाने गाते थे, इतने मूड में गाने गाते थे। इस मूवी में थे सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन, और उस टाइम रवीना टंडन तो टॉप पे थे, बट उनकी जो ड्रेसिंग सेंस था, उनका मेकअप बहुत ही आला था। और मैं कहते हैं कि जब वो शूट पर आती थी तो सब लोग एक बार एक टक देखते रहते थे, और आज भी उनकी पर्सनालिटी अभी तक उन्होंने वैसे ही बरकरार रखी है। तो यही है 90s के जो एक्टर्स और चाहे एक्ट्रेसेस हों, उनका कुछ अलग ही कमाल था और अलग ही जादू। चलिए सुनते हैं अगला गाना।
1: RM3 Radio.

0: 4:24 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल। ये तो बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है और जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं या घर पर हमें आराम से सुन रहे हैं, बस यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आरुंधति का आपका पसंदीदा प्रोग्राम। चलिए बात करते हैं दिल मूवी की। तो ये ऐसे सुपरहिट फिल्मों की बात में से फिल्मों में से एक आती है और इसकी बात करनी बनती है, क्योंकि यहाँ पर आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने जो दिल को जीता सबके उस 90s में, बस और कोई जीत ही नहीं पाई थी फिल्म। और इसमें जो स्पेशली कहते हैं ना, एक ऐसी स्पेशल परफॉर्मेंस जिसने दी वो थे अनुपम खेर। उनकी शानदार एक्टिंग और उनका जो स्टाइल था और उन्होंने जिस तरीके से लड़की के बाप का रोल किया था, क्या मस्त मूवी थी। चलिए इस मूवी का एक गाना सुनते हैं, दम दमा दम।
1: RM3 Radio.

0: 4:32 हो चुके हैं दोस्तों, हम बात कर रहे थे 90s की मूवीज़ की, तो चलिए बात करते हैं सोनू निगम की। इस समय 90s की शुरुआत में वो इतने हिट नहीं थे, लेकिन 90s के मिड में आते आते उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और फिर एक के बाद एक ऐसी फिल्में उन्होंने सुपरहिट फिल्म्स थी जिसमें उन्होंने जो गाने गाए वो कमाल के थे, जो कि आज भी सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो हम चलते हैं भाई, एक प्यारा सा गाना सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में दीवाना मूवी से।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

टाइम का कैसे पता चलता है? वही बिल्कुल नहीं पता चलता, ऐसे भागता है टाइम, ऐसे लग रहा था अभी तो मैंने प्रोग्राम शुरू किया है और देखिए आधा घंटे से ज़्यादा हो भी गया। तो भैया अगर आपको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहे हैं गाने, पसंद आ रहे हैं या इनकी जो बातें हैं छोटी मोटी सी अगर आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250620 पर और बता सकते हैं आपकी पसंद कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो चलिए भाई इन्जॉय करते हैं इस प्रोग्राम के साथ साथ इन छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी मूवीज़ की बातें और एक्टर और एक्ट्रेसेस की। तो चलिए इसमें एक जो हम गाना अगला सुनाने जा रहे हैं, दिल तो पागल है मूवी का है, जिसमें शाहरुख खान का रोमांस, माधुरी दीक्षित की अदाएँ और करिश्मा कपूर की जो एनर्जी थी, वाओ क्या मतलब उनकी जो एक्टिंग थी ना बहुत ही बढ़िया थी। और सच कहूँ तो इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म को कुछ खास दिया था और ऐसा बना दिया था कि इनकी जो दुसब की भोली सी सूरत थी ना, वो सच में इस गाने में छलकती है। तो 90s की यादगार आपके साथ फिर से जिंदा होती है। चलिए एंजॉय करते हैं भोली सी सूरत लता मंगेशकर और उदित नारायण की वॉइस में। RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: तो सूर्यवंशम मूवी याद है ना आपको, अमिताभ बच्चन ने दमदार एक्टिंग की थी, लेकिन मेट लीड में थी उसमें सौंदर्या, जिसने सभी का दिल जीत लिया था। और सौंदर्या ने बॉलीवुड में ज़्यादा काम तो नहीं कर पाई और हमारे को छोड़कर इस दुनिया से जल्दी चली गई, लेकिन कहते हैं ना काम बोलता है। उन्होंने ऐसी फिल्म में अभिनय किया कि आज भी उनको सब लोग याद करते हैं। और इंडिया में तो ऐसी हालत थी कि उनको मतलब हर चैनल पर ये मूवी लगातार रेगुलर बेसिस पर चल रही थी, और उनका काम इतना अच्छा था कि आज भी खुशी होती है उस मूवी को देख के। चलिए इसे शुरू करते हैं इस गाने को, और बहुत ही इंजॉयमेंट

0: RM3 Radio.
1: तो दोस्तों इसी के साथ आज के दिल से मिले दिल का सफ़र यहीं तक था। उम्मीद है आज के गीतों ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे RM3 पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दिल के करीब रहिएगा, और कहते हैं ना कि जब जाते हैं तो बाय बाय तो कह सकते हैं, पर मैं फिर भी आपको यही कहूँगी, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।

0: नमो नमः सर्वेभ्यः।
1: आप सभी श्रोताओं को डॉक्टर कीर्ति रामजतन और सुश्री सुरभि मोतिया की ओर से जानातु संस्कृतम, संस्कृत को जानिए साप्ताहिक कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए श्रीमान संजू टकूरी को हमारा हार्दिक धन्यवाद। आइए अद्यतन सत्र का शुभारंभ करते हैं, प्रार्थना सुनिए।
2: ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु

0: श्रोताओ, अब हम अत्र, तत्र, कुत्र और सर्वत्र इन चार शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। अत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ और सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। तो आप हमें सुनिए और दोहराइए। ईश्वरः अत्र अस्ति, ईश्वरः तत्र अस्ति, ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति।
1: ईश्वरः अत्र अस्ति, ईश्वरः तत्र अस्ति, ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वर यहाँ है, ईश्वर वहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर सब जगह है।
0: प्रकाशः अत्र अस्ति, प्रकाशः तत्र अस्ति, प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति।
1: प्रकाशः अत्र अस्ति, प्रकाशः तत्र अस्ति, प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। प्रकाश यहाँ है, प्रकाश वहाँ है, प्रकाश कहाँ है, प्रकाश सर्वत्र है।
0: वायुः अत्र अस्ति, वायुः तत्र अस्ति, वायुः कुत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति।

0: वायुः अत्र अस्ति, वायुः तत्र अस्ति, वायुः कुत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति। वायु यहाँ है, वायु वहाँ है, वायु कहाँ है, वायु सर्वत्र है।
1: धूमः अत्र अस्ति, धूमः तत्र अस्ति, धूमः कुत्र अस्ति, धूमः सर्वत्र अस्ति।
0: धूमः अत्र अस्ति, धूमः तत्र अस्ति, धूमः कुत्र अस्ति, धूमः सर्वत्र अस्ति। धुआं यहाँ है, धुआं वहाँ है, धुआं कहाँ है, धुआं सर्वत्र है।
1: सुगंधः अत्र अस्ति, सुगंधः तत्र अस्ति, सुगंधः कुत्र अस्ति, सुगंधः सर्वत्र अस्ति।
0: सुगंधः अत्र अस्ति, सुगंधः तत्र अस्ति, सुगंधः कुत्र अस्ति, सुगंधः सर्वत्र अस्ति। सुगंध यहाँ है, सुगंध वहाँ है, सुगंध कहाँ है, सुगंध सर्वत्र है।
1: आकाशः अत्र अस्ति, आकाशः तत्र अस्ति, आकाशः कुत्र अस्ति, आकाशः सर्वत्र अस्ति।
0: आकाशः अत्र अस्ति, आकाशः तत्र अस्ति, आकाशः कुत्र अस्ति, आकाशः सर्वत्र अस्ति। आकाश यहाँ है, आकाश वहाँ है, आकाश कहाँ है, आकाश सर्वत्र है।
1: प्रिय श्रोताओं, अब समय हो चला भगवद गीता के श्लोक के पाठ का, तो आइए मिलकर भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का पाठ करें। अपर्याप्तम् तदस्माकम्,
0: अपर्याप्तम् तदस्माकम्,
1: बलम् भीष्माभिरक्षितम्,
0: बलम् भीष्माभिरक्षितम्,
1: पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम्,
0: पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम्,
1: बलम् भीमाभिरक्षितम्,

0: सुरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं।
1: पूरा श्लोक सुनिए।
0: अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं।

0: भिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं।
1: इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु से कह रहे हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो श्रोताओं, यहाँ तक हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10 श्लोकों का पाठ पूरा किया।

0: यदि आपके पास आपकी भगवद गीता है तो उसे खोलिए। हम एक बार पूरे 10 श्लोकों के प्रत्येक पंक्ति का मिलकर पाठ करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः।
1: धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे

0: आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्।
1: आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्।
0: पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमू।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening to RM3 Radio.
1: इस समय शाम के 5:26 हो रहे हैं।
2: राम रसधारा, रसधारा।
1: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। राम रसधारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में दो बहनें उपस्थित हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, माला जी और अंजू जी। जय सियाराम।
3: जय सियाराम भाई जी।
1: आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की स्तुति और श्री हनुमान जी की स्तुति के साथ। जय सियाराम।
3: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा, रसधारा
2: देवी सजनों, मुशिष रामायण का देश माना जाता है क्योंकि जब भारत से हमारे पूर्वज यहाँ आए थे तो अपने साथ वे अपने रामचरितमानस ग्रंथ लेकर आए थे, क्योंकि जिस इलाके से अधिकतर शतबंध मजदूर आए थे उस इलाकों में, उन इलाकों में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में मानस ही सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ था। आज भी सैकड़ों की संख्या में हमारे देश में रामायण गाने वाले हैं। रामरस धारा प्रोग्राम के जरिए हम अधिकतर लोगों को और खासकर नौजवानों को एक मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां पर वे आकर वे अपनी श्री राम भक्ति और रामचरितमानस में अपनी रुचि को प्रदर्शित कर सकते हैं। जो भी ग्रुप रामरस धारा में भाग लेना चाहते हैं वे हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा पता है राम रसधारा, रेडियो ओरिएंटेड प्रोग्राम, MBC मोका। अभी के लिए स्टूडियो में उपस्थित बहनों से सुनते हैं रामायण संदेश। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: रामायण संदेश के बाद चलें हम सुनते हैं सुमिरनी बहनों के संग। जय सियाराम।
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा, रसधारा।
2: जय सियाराम श्रोताओं, पिछले गुरुवार के रामायण सत्संग में हमने केवट प्रसंग की शुरुआत की थी, जहां पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण अपने वन गमन यात्रा में गंगा माँ के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर श्री राम भक्ति में डूबे हुए केवट जी हट करते हैं कि जब तक वो प्रभु के चरणों को पखार न ले तक तक वे उनको अपने नाव पर बैठने नहीं देंगे। तो वहीं पर से शुरू करते हैं जहां पर हम पहुंचे थे गत गुरुवार को। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम,
1: जय सियाराम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। केवट जी के लिए कितने सम्मान की बात थी उस समय जब सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु जी के नर अवतार श्री राम जी माता सीता सहित उनकी नैया पर सवार हुए। श्री राम जी के पद पखार कर जो पुण्य उन्होंने कमाया उस पुण्य से उनका और उनके पितरों का उद्धार कर लिया। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम
1: जय सियाराम। उतरी ठार भये सुर शरीरे तास्य राम गृह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकूच है नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतर

0: कर गंगा जी के रेत यानी कि बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर कर दंडवत की। केवट ने रामचंद्र जी के सामने दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु के को संकोच हुआ कि उसको कुछ दिया नहीं। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: जय सियाराम। पिय हिय की सिय जाननहारी मुनि मुदरी मन मुदित उतारी कहूं कृपाल लेह उतराई केवट चरण गहे अकुलाई पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न चरित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी के निकेवत से कहा, नाव की उतराई लो। केवत ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिया। ऐसी घटना राम कथा में दो बार आती है। एक अभी जब केवत राम जी को गंगा पार उतारते हैं, तब माता जानकी अपनी अंगूठी उतार कर राम जी के हाथों में सौंप देती हैं केवत को देने के लिए। और दूसरी बार लंका युद्ध के बाद जब राम जी का राज्य अभिषेक के बाद राम जी सभों को पुरस्कार दे रहे होते हैं, तब भी माता सीता ने अपने हीरों का हार उतारा हनुमान जी को देने के लिए। पहले से तो ये है कि भारतीय नारी के हृदय में हमेशा पति का मान सम्मान सर्वोपरि रहता है। राम जी को अयोध्या महल से तपस्वी भेष में निकले थे और हाथों में बस बाण धनुष के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन एक पत्नी होने के नाते लक्ष्मी स्वरूपिनी सीता मैया अपने पति का मान रखने के लिए अपनी अंगूठी उतार कर राम जी के हाथों में सौंप दिया केवत को उठराई में देने के लिए। लेकिन क्या केवत स्वीकारेंगे या नहीं, ये हम जानेंगे अगली चौपाई में। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: राम जय सिया राम,
1: जय सिया राम। नाथ आजू में काह न पावा, मिति दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन ही मजूरी, आजू दीन विधि बिनी भली भोरी। राम जी और राम जी के हाथों में अंगूठी देख केवट जी कहते हैं, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आज आग आग आज बहुत बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। इसका इस केवट जी कहते हैं, इसकी क्या जरूरत है प्रभु जी, आज जितना कुछ मिल गया है आपका दर्शन करते हुए, आपके पैरों को पखारते हुए, क्या ये सब कुछ कम है? आज जैसे विधाता ने पूरी जिंदगी की कमाई एक ही पल में मेरी झोरी में भर दी है। जय सिया राम,
0: जय सिया राम।

0: जय सिया राम।
1: अब कछुनाथ न चारहूँ मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। केवट जी बोलते हैं, हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद के में मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। कितनी चतुराई से केवट जी श्री राम जी से फिर से मिलने का उपाय निकाल लेते हैं। जब आप वनवास से लौटेंगे प्रभु जी, तो फिर से हमें मिलने आएगा, बस यही उतराई आप हमें दीजिए। और हम जानते हैं लंका युद्ध के बाद जब श्री राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट रहे होते हैं, तब भी वे केवट से मिलने आते हैं, तब भी केवट से मिलना नहीं बोलते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री राम। जय जय सिया राम,
0: जय सिया राम।

0: जय सियाराम,
1: जय सियाराम। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेते। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। भक्त प्रभु को गंगा पार लगाते हैं, केवट जी प्रभु को गंगा पार लगाते हैं और श्री राम जी भक्त को भवसागर से पार लगाते हैं। जय जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: राम रसधारा रसधारा
1: देवी और सजनों, हम राम रसधारा के प्रोग्राम के लगभग अंत तक आप पहुंचे हैं। चलते चलते हम संकेत कर देते हैं कि आने वाले दिनों में स्कूल के बच्चे छुट्टी में होंगे, और अगर इन छुट्टी के दिनों में स्कूल के बच्चे यहाँ स्टूडियो में आना चाहे और हनुमान चालीसा गाना चाहे तो आप अवश्य आ सकते हैं, हमसे संपर्क रख सकते हैं। राम रसधारा ओरिएंटल रेडियो MBC मोका, इस तहत बच्चों को एक साथ मिलने का मौका मिलेगा, स्टूडियो में आने का मौका मिलेगा, मीडिया से रूबरू होने का मौका मिलेगा, और कौन जाने इस आने से आपके लिए भविष्य में कौन से द्वार खुल जाएंगे। जय सियाराम, जय जय हनुमान।

0: रामरसधारा।
1: सो इसी के साथ ही आज का हमारा रामरसधारा ये इस सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित तीन दो बहनों को, माला जी को, रंजू जी को कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। देवी और सज्जनों, अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पाठ दो बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम, जय जय हनुमान।
1: 94, 95.6, 98.2 MHz, you're listening RM Free Radio.

2 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है। ये मानना है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस के रेटिंग को BAA3 पर रखा है बरकरार। मॉरिशस टेलीकॉम ने साल 2025 में बहुत ही शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 13.5 बिलियन रुपए की दर्ज की है रिकॉर्ड। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का किया है ऐलान। वित्तीय साल 2026-2027 मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक नया मोड़, कर्ज का धीरे धीरे भुगतान, खर्चों पर नियंत्रण, मेट्रो नेटवर्क का आधुनिकीकरण और तोड़फोड़ को रोकने के लिए नए बड़े कदम। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने मॉरिशस मेट्रो के सुरक्षित और लंबे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया है अपना विजन। और विदेश में वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के एक हफ्ते के बाद मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2,295 हो गई है, जबकि 11,000 से अधिक लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि साल 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय

0: स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है। ये मानना है रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस की सोवरेन रेटिंग को BAA फ्री पर बरकरार रखा है। भले ही इस रेटिंग एजेंसी ने घाटे को कम करने और सरकारी कर्ज को स्थिर करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की है, परंतु उसका यह भी मानना है कि कई ऐसे खतरे हैं जो इस सुधार के रफ्तार को बिगाड़ सकते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस टेलीकॉम ने साल 2025 में बहुत ही शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 13.5 बिलियन रुपए की रिकॉर्ड दर्ज की है। इसके साथ ही कंपनी ने मॉरिशस को अफ्रीका और एशिया के बीच एक डिजिटल हब बनाने के अपने बड़े लक्ष्य को और मजबूत किया है। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: मॉरिशस टेलीकॉम की वृद्धि जारी। वित्तीय वर्ष 2025 के समापन पर ग्रुप के कारोबार में 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज। नेट प्रॉफिट 1 बिलियन रुपए से अधिक पर बरकरार। ये एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है जिसे उसने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के वास्ते भारी निवेश किए। मॉरिशस टेलीकॉम के CEO विमल गंगादी ने कहा,
2: C'est qui explique ça, c'est premièrement confiance. Confiance qui population est dans le brand Mighty, confiance qui est dans Mauritius Telecom, qualité de service qui nous passe beaucoup de temps pour improve. L'année dernière, nous avons investi 2,7 milliards roupies dans ce qu'on appelle CAPEX pour faire que nos réseaux, nos infrastructures viennent encore plus reliable.
1: अपने वित्तीय परफॉर्मेंस के अलावा कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और शिक्षा सेक्टर के लिए ऑपरेटर नवाचार के साथ उम्मीद रखे हुए हैं।
2: Nous lançons un produit qui s'appelle Mighty GPT, qui nous dit nous-mêmes à Mauritius Telecom de payer service dans nos opérations. Certains de nos clients payent service dans le domaine de business. Et nous aussi expandons ça, nous appelons ça Mighty GPT Education. L'idée, c'est ban professeur dans l'école, zogen zouti IA qui fait de sorte que zo capable passe plus le temps faire ce qu'on appelle personalized learning. Et pour ban élèves, zogen ce qu'on appelle un personalized tutor.
1: इसके अलावा मॉरिशस टेलीकॉम अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान 2026-2029 की बदौलत अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी ला रहा है, जिसका मकसद है मॉरिशस को अफ्रीका और एशिया के बीच एक डिजिटल कॉन्फिडेंस प्लेटफॉर्म की तरह स्थापित करना।
2: Nous là pour servir la population mauricienne, tout d'abord. Donc ça qui nous fait éclairer, nous make sure, comment dire, côté réseau, côté mobile, côté internet, nous avons un service bien fiable. Et là, quand nous sommes au-delà de ça, dans la région, donc dans l'océan Indien et dans l'Afrique, c'est là que nous trouvons nous un rôle qui est capable, bien important. Donc, premièrement, dans le domaine de connectivité même. Donc, nous en cours avec différentes négociations en ce moment-ci pour make sure que, comment dire, Maurice les connecte lui-même à l'Afrique bien, mais aussi à l'Asie. Mais à travers Maurice, l'Afrique s'y a connecté lui-même better.
1: Mauritius Telecom qui a reçu 1,9 million उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं 5G के कवरेज के साथ। मॉरिशस और रोड्रिग्स के 92% इलाकों के लिए, 3,94,000 फिक्स्ड लाइन के लिए और 2,88,000 ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के लिए।
0: पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के लागू हो जाने के बाद सड़कों पर सावधानी भी और ज्यादा तेज हो गई है। इसके चलते कंट्रावेंशन की संख्या में एक नया मोड़ आया है। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: आंकड़े चिंताजनक हैं। पिछले 31 जनवरी से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम फिर से शुरू किए जाने के बाद से पुलिस की ओर से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए 16,000 कंट्रावेंशन दिए गए। पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में सांसद फराद ओमेर के एक प्रश्न का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री उस्मान माहमूद ने सचेत किया कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का अपराध काफी ज्यादा है, सबसे गंभीर अपराध जिससे पेनाल्टी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इन पिछले 2 महीनों में निर्धारित रफ्तार से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए आंकड़ों में 52% की बढ़ोतरी हुई। जहां तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा का है तो इसमें 53% की वृद्धि हुई है। 25 जून तक 850 कंट्रावेंशन दर्ज किए गए। मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा,

इन दो कैटेगरियों की रफ्तार से चिंता हो चली है। रफ्तार का सड़क सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब तेजी से गाड़ी चलाते हैं तब ब्रेक लगाते वक्त ब्रेकिंग का फासला ज्यादा लंबा हो जाता है, अतः टकराने की संभावना ज्यादा होती है। और जब तेजी से जा रहे हों तो जिस जबरदस्त तरीके से दूसरे

0: लिंग है क्योंकि लाइसेंस खोने का भी डर है क्योंकि अंक काटे जा रहे हैं तब बहुत देर हो जाती है। मंत्री ने याद दिलाया कि देश भर में लगाए गए 60 से ज्यादा फिक्स्ड राडार इन अपराधों के बारे में पता चला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार उचित समय पर पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के संभावित बदलावों की जांच करेगी। मंत्री उस्मान महमूद ने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क सुरक्षा के विषय पर कोई समझौता नहीं होगा।
1: अब उतरते हैं फुटबॉल की दुनिया में जहां पर इंग्लैंड की टीम डीओ कोंगो के खिलाफ मैच में मुश्किल में फंसती हुई नजर आई, परंतु आखिरकार उसने मैक्सिको के साथ राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में लंबे समय तक इंग्लैंड की टीम 1-0 से पीछे चल रही थी, परंतु अंत में हैरी केन ने दूसरी छमाही यानी कि सेकंड हाफ में शानदार 2 गोल दागकर फ्री लाइसेंस को हार से बचा लिया। इंग्लैंड ने ये मैच 2-1 से तो जीत लिया, परंतु टूर्नामेंट में आगे का सफर तय करने से पहले उन्हें अगले दौर में अभी अपनी कमियों पर काम करना होगा। इस मैच में इंग्लैंड की टीम को कोंगो के बेहतरीन गोलकीपर की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस रोमांचक मुकाबले का सीधा प्रसारण कल रात आप सभी ने एमबीसी टेलीविजन के 11 चैनल पर देखा है। अरविंद बिसेसर की रिपोर्ट।
2: मैच की शुरुआत में ही इंग्लैंड को लगा हल्का सा झटका जब कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 7वें मिनट में ही खाता खोलता है। सिपेंगा का गोल, ये उसका पहला गोल है कोंगो के लिए। इसके बाद इंग्लैंड ने भरसक कोशिश की मैच इक्वलाइज करने के लिए। बेलिंगाम कोंगो के गोलकीपर के आगे नाकाम रहा। वान बिसाका ने अपनी टीम को बचाया राशफोर्ड के शॉट पर। इस बीच कोंगो को और एक गोल बनाने का मौका मिला। हैरी केन के अनगिनत प्रयासों पर कोंगो के गोलकीपर पासी कई बार इंग्लैंड को रोकता है। फर्स्ट हाफ में कोंगो 1-0 से आगे। सेकंड हाफ की शुरुआत में इंग्लैंड का दबदबा बढ़ा। राशफोर्ड को निकालकर एंटोनी गोर्डन को भेजा गया। और उसी के क्रॉस पर हैरी केन हेडर से इंग्लैंड के लिए इक्वलाइज करता है। फिर हैरी केन अपनी टीम को जितवाता है। 86वें मिनट पर कोंगो गणराज हिम्मत से जी जान से खेली, सम्मान से वर्ल्ड कप छोड़कर जा रही है। इंग्लैंड के लिए अगला मैच मेक्सिको के खिलाफ होगा।
1: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स के रोमांचक मुकाबले जारी हैं, जहां किसी भी बड़े उलटफेर से इंकार नहीं किया जा सकता है। मैचों का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। स्पेन ऑस्ट्रिया के खिलाफ आज रात 11 बजे से एमबीसी 11 पर सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे, इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। पुर्तगाल क्रोशिया के खिलाफ खेलेगी कि उसकी टीम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम भी एक्शन में होगी। ये मैच देर रात यानी कि कल सुबह 3 बजे खेला जाएगा। उधर स्विट्जरलैंड अल्जीरिया के खिलाफ ये दोनों टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए कल सुबह 7 बजे मैदान में उतरेंगी। अरविंद बिसेसा की रिपोर्ट।
2: देखा जाए तो स्पेन इस मैच में फेवरेट है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ लाहोगा अगर अपने स्टाइल का फुटबॉल खेलता है तो कठिन होगा उसे हराना। स्पेन वैसे इस वर्ल्ड कप में फेवरेट टीमों में से एक है। अभी तक असली रंग नहीं दिखा पाए, पर अब गोल स्कोर कर रहे हैं। एक गोल भी कंसीड नहीं किया है। स्पेन ग्रुप एच में पहला स्थान पर आया था, जबकि ऑस्ट्रिया ग्रुप जे में से दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना के पीछे। लामिन यामाल की टीम को सावधान रहना होगा क्योंकि ऑस्ट्रिया भी अपने भाग्यों को आजमाएगा। निको विलियम्स, येरेमी पिनो स्पेन के लिए नहीं खेल पाएंगे इंजरी के कारण। ऑस्ट्रिया के कोच राल्फ रागनिक की टीम तैयार है। डेविड अलाबा और नुटोविच ये कुछ खिलाड़ी हैं जो अपना अनुभव ला सकते हैं। इस मैच का सीधा प्रसारण MBC के स्पोर्ट्स 11 पर होगा आज 11 बजे। कल सुबह 3 बजे टोरंटो में

0: पोर्टुगल और क्रोएशिया के बीच आमना सामना। एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरी ओर लुका मोड्रिच, दो अनुभवी खिलाड़ी। पोर्टुगल ग्रुप के में से यहां पर आया है, जबकि क्रोएशिया ग्रुप एल में था दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पीछे। वैसे नामी स्टार खिलाड़ी हैं इन दोनों टीमों में। मिडफील्ड में टकराव होगा, कठिन होगा कहना किस टीम की जीत होगी। और कल सुबह 7 बजे स्विट्जरलैंड का सामना अल्जीरिया से। स्विट्जरलैंड 2 मैच जीतकर 1 ड्रॉ करके अपने ग्रुप में टॉप पर आया था, पर अल्जीरिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर ये लोग काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं।
1: फिर से लौटे स्थानीय स्तर पर, जहां पर वित्तीय साल 2026-2027 मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक नया मोड़ साबित होने जा रहा है। कर्ज का धीरे धीरे भुगतान, खर्चों पर नियंत्रण, मेट्रो नेटवर्क का आधुनिकीकरण और तोड़ फोड़ को रोकने के लिए नए कड़े कदम। इन सब के बीच भूमि परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने मॉरिशस मेट्रो के सुरक्षित और लंबे भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में अपना विजन पेश किया। वे आज दोपहर को पोर्टलुई में क्रॉस रेल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जारी होने के बाद अपनी बात रख रहे थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मेट्रो एक्सप्रेस के फायदे सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। अध्ययन के अनुमान के अनुसार ये मेट्रो नेटवर्क देश को हर साल लगभग 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक फायदा पहुंचा रहा है। अशिता रघु की रिपोर्ट।
2: मेट्रो एक्सप्रेस केवल एक परिवहन सेवा नहीं है। ब्रिटेन की रेल परिवहन परामर्श कंपनी क्रॉस रेल इंटरनेशनल की रिपोर्ट का यही मुख्य निष्कर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार ये नेटवर्क हर वर्ष लगभग 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है।
3: क्रॉस रेल इंटरनेशनल
2: ने कई चीजों का खुलासा किया है, जैसे सरकार को मेट्रो एक्सप्रेस प्रणाली के काम करने से 1.7 बिलियन रुपए प्राप्त होती है। मतलब इसका यूजर बेनिफिट होता है, मतलब स्कूलों, व्यवसायों, अस्पतालों इत्यादि को फायदा होता है। यातायात कम होती है पीक टाइम के दौरान तथा दुर्घटनाओं से भी बचा जाता है। ऊर्जा और प्रदूषण भी कम होती है तथा छोटे ठेकेदारों को भी निर्माण के समय उन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होती है।
3: Avec ban PME, je bénéficie de ça parce que pendant la construction, j'ai une gamme de contrats, j'ai une capacité de survivre.
2: Network के विस्तार पर कई वर्षों तक निवेश करने के बाद कंपनी ने इस वर्ष अपने ऋण का चरमबद्ध भुगतान शुरू कर दिया है। साथ ही वह अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने के प्रयास भी जारी रखे हुए हैं।
3: Salanela, nous commençons à rembourser ban dette.
2: इस वर्ष से हम कर्ज चुकाना शुरू कर रहे हैं और मेट्रो एक्सप्रेस की चंद ट्रेनों का मरम्मत भी किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार को मेट्रो एक्सप्रेस के कर्ज चुकाने, ट्रेनों की मरम्मत हेतु तथा आम खर्चों के लिए 1.4 बिलियन रुपए देनी होगी, पर एक काफी मोटी रकम हमें भारतीय सरकार की ओर से प्राप्त हो रही है। सेवाओं के आधुनिकीकरण और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही नई टिकटिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी। उस्मान मोहम्मद ने जनता से मेट्रो एक्सप्रेस की अवसंरचना की सुरक्षा करने की अपील की। उन्होंने तोड़फोड़ और उपकरणों की चोरी की घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि इससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होता है और यात्रियों को दी जाने वाली सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।
1: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि बजट 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है, ये मानना है रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस के रेटिंग को BAA3 पर बरकरार रखा है। भले ही रेटिंग एजेंसी ने घाटे को कम करने और सरकारी कर्ज को स्थिर करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की है, परंतु उसका यह भी मानना है कि कई ऐसे खतरे हैं जो इस सुधार के रफ्तार को बिगाड़ सकते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर विवरण रजनी बिकर का।
4: बजट 2026-2027 सरकार की बजट स्ट्रेटेजी का एक अहम पड़ाव है। मूडीज की ओर से पिछले जून महीने के अंत में साकार किए गए मूल्यांकन में इस बात का उल्लेख। रैंकिंग एजेंसी ने पाया कि वित्तीय मजबूतीकरण को लेकर ठोस प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त मूडीज ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की आय को बढ़ाने के वास्ते कदम

0: निर्धारित है। इनमें सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने वालों के लिए 35% की नई कर लागू की बात शामिल। डिजिटल सेवाओं के विदेशी सप्लायरों के लिए टैक्सेशन भी शामिल। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी में ढांचागत सुधार भी सम्मिलित। अर्थशास्त्री डॉक्टर भविष जगन्नाथ ने कहा,
1: Maurice, les pays commencer par saluer le progrès du pays en matière d'assainissement budgétaire. Les pays souligner dans le rapport là et la réduction du déficit budgétaire à 3,7% du PIB. Maurice Perelève dans son rapport que l'exécution budgétaire l'une dépasse dans une prévision soutenue par une baisse de la dépense courante plus marquée qu'anticipée. En conséquence, la ratio de la dette publique par rapport du PIB commence à stabiliser et les pays inversent ainsi la tendance à la détérioration que Moody's s'y prévoit auparavant.
0: लेकिन एजेंसी सावधान है। उसका कहना है कि मॉरिशस के लिए एक नकारात्मक दृष्टिकोण Baa3 का नोट बरकरार है। उसका मानना है कि कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। मूडीज के अनुसार घाटे की कमी का एक अहम भाग शागोस द्वीप समूह के समझौते की प्रतीक्षित आय पर भी निर्भर है। इस विशेष आय के बिना घाटा GDP के 5% से नजदीक पहुंच सकता है। इसके अलावा एजेंसी ने पेंशन सुधार से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया, जिसे भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और साथ में हाईली क्वालिफाइड पेशेवरों के लिए नई वित्तीय क्षमताओं के प्रभाव भी हैं और योग्यताओं के पलायन के बढ़ते खतरे भी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के CEO Paul Baker ने कहा,
2: explaining that the pension expenses are relatively high, it's high time to reform the system. Maybe as an economist, how you view the pension reform in Mauritius?
3: Yes, I mean, so Mauritius, like most countries, is facing an aging population. So a smaller tax base to pay towards and to contribute towards government revenue, and yet higher payouts. And so that is not unusual to be a burden on most countries. So some sort of reform may indeed be needed. Inevitably, maybe not this year or next year, but there will be need to reform the pension system in Mauritius because of this aging population.
2: The policy drift risk mentioned by Moody's, you want to add something else?
3: One of the issues is the changes in taxation in Mauritius. So there is a much higher rate for those that earn quite a lot. And that is likely to affect confidence and spending. And so we can expect, I think, much lower growth rates than was forecasted in the budget.
0: Moody's ने ये भी कहा कि मॉरिशस में सार्वजनिक फाइनेंस में सुधार इस बात पर भी टिका हुआ है कि सरकार किस तरह आर्थिक एवं राजनीतिक खतरों का सामना करते हुए घोषित सुधारों को अमल में लाती है। अंत में मूडीज ने वैश्विक अर्थतंत्र की अनिश्चितताओं को लेकर सचेत किया, जैसे कि जियोपॉलिटिकल तनाव है, सप्लाई चेन में रुकावटें और रुपए के भाव का डिप्रिसिएशन, जिनका असर देश की वृद्धि की संभावनाओं पर पड़ सकती है।
4: वाकवा के ताकामाका ब्रिज को एक नया रूप दे दिया गया है। लगभग 60 साल पुराना ये पुल लंबे समय से ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बना हुआ था। इसकी हालत ऐसी थी कि विपरीत दिशाओं से आने वाली दो बसें भी एक साथ सुरक्षित तरीके से यहां से नहीं गुजर पाती थी। कई महीनों के काम के बाद इस नए और चौड़े किए गए पुल का उद्घाटन आज सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश द्वारा किया गया। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: वाकवा और लामारी को जोड़ने वाले इस मार्ग से हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरती हैं, लेकिन अब तक ताकामाका पुल से होकर गुजरना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ था। पुराना पुल मौजूदा यातायात के लिए काफी तंग हो गया था, विशेषकर बसों के आमने सामने आने पर आवाजाही मुश्किल हो जाती थी। साथ ही पुल की संरचना भी जर्जर होने लगी थी, इसलिए पुल का पूरी तरह पुनर्निर्माण किया गया और इसे चौड़ा किया गया। इस पुल की चौड़ाई 5.420 मीटर हुआ करता था, अब निर्माण के बाद इसको 6.750 मीटर तक बढ़ाया गया है। ये पुल पहले से ही नीचे से ढहने लगा था, लोहे दम तोड़ने लगे थे, पर मरम्मत के दौरान इसे पूरी तरह मजबूत बनाया गया है। नई व्यवस्था से खासकर व्यस्त समय में यातायात प्रबंधन और आसान हो जाएगा।
6: ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है।

0: है क्योंकि जो भी वाहन जोल से निकलते हुए सावोई की ओर बढ़ती है इसी मार्ग से जाती है। ये एक रणनीतिक जगह है जहां बहुत बाशिंदे और कारोबार मौजूद हैं। प्रतिदिन कई हजार वाहन यहां से गुजरती हैं। जब निर्माण कार्य जारी था तो एक डायवर्शन लाया गया था जिसके कारण यातायात में रुकावट हो रही थी। अब सब सुगम हो गया है। वाहन चालकों ने भी इस बदलाव का स्वागत किया। इस नए पुल के साथ अधिकारियों को उम्मीद है कि वाकवा क्षेत्र की प्रमुख यातायात समस्याओं में से एक का स्थायी समाधान होगा और लोगों को अधिक सुगम, सुरक्षित तथा आज की यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप सफर मिल सकेगा।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब बैंक कुछ मामलों में जांच के लिए जानकारियां दे सकेंगे। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का ऐलान किया है। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किए बिना कुछ जरूरी जानकारियां एफसीसी को सौंप सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को एक समान बनाना है ताकि पिछले अप्रैल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में किए गए बदलाव के बाद पैदा हुई कानूनी विसंगति या आपसी टकराव को सुधारा जा सके। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक नया कदम उठाया गया है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल में कई ऐसे नए नियम लाए गए हैं जिनका मकसद पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही इसमें हिंसा के उन रूपों को भी पहचान की गई है जिन्हें पकड़ना अक्सर मुश्किल होता है। इन नए नियमों में मानसिक और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एम्पावर और रेज ब्रेव गर्ल्स इस नए कानून का स्वागत कर रही है। ये कानून घरेलू हिंसा पर भी ध्यान देगा जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं एक ऐसे कारीगर के बारे में जो अब एक टेक एंटरप्रेन्योर बन गया है। जी हाँ, आज वे एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी के मालिक हैं जिसे निवेशकों से बड़ी सफलता मिल रही है। क्राफ्टी कंपनी के संस्थापक ब्रेनो लुगाला को अपनी स्टार्टअप के लिए अब तक 7 मिलियन रुपए का निवेश मिल चुका है। उन्हें ये कामयाबी इसीलिए मिली क्योंकि उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन और सहारा मिला। विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के एक हफ्ते बाद जान माल के नुकसान के आंकड़ों में नया बदलाव आया है। इसका मतलब ये है कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2,295 हो गई है, जबकि 11,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने बड़ी त्रासदी के बाद कल 7 दिनों से राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उधर रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया। इसके कारण भीषण विस्फोट हुए और कीव कई घंटों तक हिलता रहा। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख ने बताया कि हमलों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, खासकर सेंट्रल प्लेटो पर, जबकि कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार खासकर दक्षिणी पश्चिमी समुद्र के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्यास्त 5:41 पर जबकि कल सूर्योदय लगभग 7:45 बजे।

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। रेड स्टार लेन तियाहोश में, रेड स्टार लेन तियाहोश में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद इकबाल जबू जिन्हें सब लोग बाय इकबाल के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज रात के साढ़े आठ बजे उन्हीं के मकान रेड स्टार लेन तियाहोश से निकालकर दफनाने के लिए बामोशो का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। Funeral tonight at 8:30. SSA Lane, Pont-la-Chaire, Notre-Dame. SSA Lane, Pont-la-Chaire, Notre-Dame. 75 साल की, 75 years old की, श्रीमती कृष्णावती तिलु, पैदाशी नाम जिलाल, और जिन्हें सब लोग रानी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री नीलेश तिलु के घर SSA लेन पोंट-ला-शेयर नोट्रडाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोमोशो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। बुधन रोड पेलग्रैन सेवास्तोपोल में, बुधन लेन पेलग्रैन सेवास्तोपोल में 62 साल की, 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजवंती सिमरिक्या जिन्हें सब लोग सुनीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती मीनाक्षी रघु के घर बुधन रोड पेलग्रैन सेवास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडुमास का श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। कालीचन लेन कारो लालियन वाकवा में, कालीचन लेन कारो लालियन वाकवा में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री हबी मग्नू शिवनाथ जिन्हें सब लोग पंडुमन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे उनके बेटे श्री किरण शिवनाथ के घर कालीचन लेन कारो लालियन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। रामलगन गली बेजिकाप में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री धीरज इतु जिन्हें सब लोग अजय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उन्हीं के घर रामलगन गली बिजिकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोंते बेलोम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 1 PM। रॉयल रोड बोबासे में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदत्त रामबरन जिन्हें सब लोग पनन के नाम से भी जानते थे और जो नंबर 13 ए एवेन्यू कॉर्जिनल सुदना कैथोबोन के पूर्व निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी

दिन के 11 बजे ला शापेल ऑन्डोंट एलियनसंस रॉयल रोड बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोल्फेरिनो वाक्वा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 11 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में, ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल की, 76 years old की श्री सुलेश गुकुलक, श्री सुलेश गुकुलक जिन्हें सब लोग सुलेश के नाम से भी जानते थे और जो SSRN अस्पताल के पूर्व अटेंडेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजोदोरोज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। टेम्पल रोड अमोरी में, टेम्पल रोड अमोरी में 82 साल की, 82 years old की श्री मौदे मुदेली वायापुरी, श्री मौदे मुदेली वायापुरी जिन्हें सब लोग राजू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के 1 बजे, कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माया वायापुरी के घर टेम्पल रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 1 PM। सिमिचिया रोड प्लेमायो में, सिमिचिया रोड प्लेमायो में 36 साल की, 36 years old की श्री विकेश बुधन, श्री विकेश बुधन जिन्हें सब लोग इशले के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के 10 बजे, कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती सांदिया राबूजी के घर सिमिचिया रोड प्रेमायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे, जी हाँ, एट 10 AM। शिवाला रोड बुआरूज पॉम्पलेमुसेज में, शिवाला रोड बुआरूज पॉम्पलेमुसेज में 60 साल की, 60 years old की श्री विश्वजीत बिकम, श्री विश्वजीत बिकम जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ शनिवार दिन के 1:30 बजे, शनिवार 4 जुलाई को दिन के 1:30 बजे उनकी बहन कुमारी पिंकी बिकन के घर शिवाला रोड बुआरूज पॉम्पलेमुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल ऑन सैटरडे 4th of July एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio. Radio.
1: अपने घर मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6:37 हो गए हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की भी बारी आ गई है, इसलिए हम भी यहाँ पर छटक के भटक के यहाँ से खिसकने से पहले आ गए हैं यहाँ पर। नमस्कार और आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं फॉर योर रेडियो मनोरंजन नई सोच कार्यक्रम। अभी के लिए मेरे पास कोई सोच नहीं है, सोच करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सोचना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक बात मैं कहना, मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम छोटी छोटी बात को लेकर के हम लोग बहुत ही एक्चुअली परेशान हो जाते हैं। फलाना ने मेरे बारे में ये कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया है। पता है दोस्तों, कभी कभी ना दूसरों के वैलिडेशन का होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो इंसान वैलिडेशन दे रहा है आपको वैलिडेट करने के लिए, वो खुद इनवैलिड है ना।

जो लोग अभी घर जा रहे हैं आपकी आपकी मम्मा या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या फिर आपके बच्चे वो इंतज़ार में हैं कि कब पापा आएगा, कब मम्मी आएगी। तो चलिए ये गाना उन लोगों के नाम कि घर वापस कब आओगे जी। अगर आप ड्राइव कर रही हैं सो ड्राइव सेफली दोस्तों।

जो दोस्तों इस वक्त शाम के 6:51 हो गए हैं, बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हम बात कर रहे हैं कि क्यों दूसरों के वैलिडेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेटली जब आपकी माँ या फिर आपके पिताजी कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रही हैं, ऐसे कभी कभी होता है वो डांट करके ही भी कुछ समझा रही हैं, उनका वैलिडेशन जस्टिफाई होता है। लेकिन जो इंसान आपको जानते नहीं है, आपकी ABCD तो दूर की बात है, ऐसे इंसान अगर आप कुछ वो वैलिडेशन दे रहे हैं और इसको लेकर के आप रो रहे हैं या फिर इसको लेकर के आपको खुशी मिल रही है, तो वहां का वैलिडेशन जस्टिफाई नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको पता है कि आप कौन हैं, मान करके चलिए आप 30 साल के हैं, कम से कम 25 साल तक आप अपने आप को जानते तो है ना। अगर 25 साल आप अपने आप को जानते हैं और 25 दिन जानने वाले जो इंसान हैं आपको वैलिडेशन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक्चुअली आप उस वैलिडेशन को लेकर के आपको ज्यादा रोना धोना करना होगा, उसमें कोई सेंस ही नहीं है ना। तो इसके बारे में सोचिए, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के वैलिडेशन को लेकर के वे रोते हैं, परेशान होते हैं, यहां तक कि स्ट्रेस में चले जाते हैं या फिर कुछ अंदर से खटकते हैं। तो क्यों करना जरूरी है यार, अपने आप को जानते हैं ना।

जिंदगी में हमेशा स्माइल करते जाइए और सदकर्म करते जाइए। इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज कार्यक्रम से कनेक्टेड विव अभी फॉर योर रेडियो मनोरंजन।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio.
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं। नमस्कार और आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दिलों की आवाज कार्यक्रम। ये एक ऐसा शो है जहां पर आप लोगों की फरमाइश हम यहां पर चलाते हैं। एक्चुअली मुझे एक प्लेलिस्ट मिल गई है आप लोगों के खुद के फोन कॉल्स के माध्यम से। चलिए ये गाना आप लोगों के नाम।

जी हाँ दोस्तों, शाम तो ढल गई है और रात के 7:30 बजे हुए हैं। और क्या चाहिए मेरे दोस्त, इस रोमांटिक मूड को बरकरार रखने के लिए वेटिंग फॉर यू ऑन 5250-6200। और आप हमें फोन भी कर सकते हैं ऑन 402-4800 जिस पर 402-8070 पर फोन करने का आइडिया एकदम मस्त रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात के 7:33 हो गए हैं। बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। पैगाम तो हमें मिल गई है फ्रॉम कनाडा, खासकर केबेक से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई विनय, बाय लॉगिंग ऑन freewradio.mbcradio.tv।

कैसे हैं भाई साहब, सब ठीक है ना? पता है विनय की खासियत क्या है? जब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं ना, वो कहते हैं, पता है अभी आप हमसे हमर संगे भोजपुरी में बतियावा भोजपुरी में केबैक में हो, जब बैठ करके भोजपुरी में बतियाए के जो मजा बातें वो अलग हुए बातें। तो चलिए भाई विनय, ये गाना खासकर आपके लवली वाइफ गौरी के नाम, साथ ही साथ वी डू हैव यतीश और सानवी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं वहाँ पर ठंड लग रही है या फिर बहुत ही मतलब गर्मी है, आई डोंट नो, लेकिन हमारे जो गीत है यहाँ पर एक से बढ़कर जो एक गीत हम यहाँ पर चला रहे हैं आप लोगों के नाम। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर रहेंगे रात के 9 बजे तक। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास बहुत टाइम है हमें फ़ोन करने के लिए, और कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। वेटिंग फॉर यू एवरी वन, एंड ऑफ कोर्स आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं ऑन 402-80-70 पर फोन, जबकि मैसेजेस ऑन 5250-6200।

हाय हाय मेरा दिल भी बेकाबू हो गया जी, क्योंकि ऐसे गीत जब आप लोग फरमाइश करते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। इस वक्त रात के 7:48 हो गए हैं, एंड ऑफ कोर्स यहां पर दिल को बेकाबू करने के लिए हम तो यहां पर एकदम रेडी है जी।

चलिए इस वक्त हमारे साथ रीटा जो रिजबेल के रहने वाली हैं, सभी की सुंदरयाल परिवार के लिए उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है और उन्होंने यह कहा है कि ये गाना खासकर उनके पति अजय के नाम। वी ऑल्सो हैव दो बेटे जिनका नाम है व्योम और अखिल और सभी की सुंदरयाल परिवार के नाम।

55 मिनट हो गए हैं इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं भाई अजय जो पोटली से है। उन्होंने कहा उनके भाई अजीत और बहना आशा के नाम ये गाना हो जाए जहरीला इंसान। मैंने सोचा कि इंसान भी जहरीले होते हैं, क्या उनमें वो वेमिनम है, जहर है भाई? ये सोचने वाली बात है। ये गाना भाई संजय खासकर आपके नाम। ओ हंसिनी, मैं हंसिनी के बारे में सोच रहा हूँ, हमारे रेडियो मस्ती वाली हंसिनी जी। सो गाइस वेटिंग फॉर यू ऑन 402-80-70 पर आप हमें फोन कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। एंड ऑफ कोर्स जितने सारे लोग इस वक्त काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाइस ड्राइव सेफली, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, एक लबों पर मुस्कान और साथ ही साथ आप ड्राइव करते जाइए और गुनगुनाते जाइए। बैकग्राउंड म्यूजिक तो हम आपको देते जा रहे हैं ना।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening to RM3 Radio.
1: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

वो पूछ रही है कि मैं यहाँ मैं वहाँ, अरे भाई मैं तो यहीं पर हूँ, बस आप लोगों के साथ हूँ। नमस्कार और आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर यू दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। रात के 9 बजे तक हम आपका साथ देंगे और ऐसे टाइम पर 402-80-70 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर अपने मैसेजेस भेज सकते हैं ऑन 5250-6200। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे हम यहाँ पर चलाएंगे। अच्छा, आप किचन में हैं, क्या बात है, कौन सा खाना पक रहा है मुझे भी तो बताइए, शेयर कीजिए मेरे साथ। अगर आप लोगों ने खाना खा लिया है या फिर अभी इस वक्त खा रही हैं तो हम आपको कहना चाहेंगे शुभ आहार, बोन अपेटिट। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ ट्यून हो गए हैं। और हम आपको यही बताना चाहेंगे कि ये ज़िंदगी की जो भागा दौड़ी है, पूरे दिन इधर उधर भाग करके, छलांग मार करके, बस में धक्के मार मार करके, जब आप घर पहुंचते हैं तो वहां पर एक दूसरे तरह के डांस होते हैं। डांस करने के बाद, खाना बनाने के बाद, बच्चे को देख लेने के बाद, तब थोड़ा सा समय आप अपने आप के लिए निकालते हैं। निकालना ज़रूरी है मेरे दोस्त, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस एक नागिन की तरह है, जब हम लोगों को दसना शुरू करता है ना, तो पता नहीं चलता है वो जहर हमारे शरीर के किस कोने में चला जाता है। इसीलिए अपने आप के लिए समय निकालिए और ऐसे टाइम पर हम एक बहुत ही सुंदर गाना, खासकर मैं कहूँगा एक गज़ल आप लोगों के नाम चलाऊँगा। और इस गज़ल की फरमाइश की है विदुला, जो सुया की रहने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा, पवन साथ ही साथ है तुषिका, योगिनी, बालचंद्र, शक्ति, उनकी पोती वेदना और ज्योति के नाम। उन्होंने कहा कि बताएं अभी आज मैंने क्या बनाया है, बुयों, हाँ, और जो आलू की जो चटनी है ना, उन्होंने उसको तो चटनी तो बनाई है, लेकिन जो चटनी के जो मिर्च है, जैसे कि हम कहते हैं ना भोजपुरी में, सुखल पीमा की संगी नीमान से। जी हाँ दोस्तों, और भात, क्या बात है, एक थर्सडे की रात, और क्या चाहिए मेरे दोस्त। मैंने कहा, आपने हाथ से खाया ना, उन्होंने हाँ, हाथ से खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो चलिए ये गजल आपके नाम, मुसारत नासिर की आवाज में।

ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुख के मारे दुखी भी हैं, थकान के साथ साथ उनकी आंखें भी नम पड़ गई हैं। इट्स ओके यार, बॉस ने आज आपको डांट दिया, इट्स ओके यार, होता है, किसी ने बुरा कह दिया है, दैट्स ओके, इट्स फाइन, हम आपके साथ हैं ना। अगर आप बिखर गए हैं प्यार देने के लिए, हम भी आ गए हैं।

इस आपाधापी जिंदगी में एक ठहराव सा होना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त, इसीलिए इस तरह के गीतों की फरमाइश करके हम आपके शुक्रगुजार हैं।

और इस वक्त हमारे साथ उमा है जो फोजिसा की रहने वाली है। उमा ने कहा ये गाना खासकर अभिषेक की दादी बसंती के नाम और मॉरिशस में जितनी सारी जो बसंतियां हैं उन सभी बसंतियों के नाम ये गाना, पिया बसंती। उमा मैंने ठीक से कहा ना?

चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कौन, वी डू हैव इंद्रा सेन। उन्होंने कहा नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, अभी ये गाना खासकर उनके सभी परिवार के नाम। चलिए इंद्रा सेन, हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी डू हैव रेहाना, उन्होंने कहा खासकर ये गाना आप चलाए जलीला के नाम। सो यस रेहाना, व्हाई नॉट। वी ऑल्सो हैव जियाद और सभी उनके फैमिली मेंबर्स जो फिनिक्स के हैं। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे किसके नाम, नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा जिस नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, अभी ये गाना मेरे पति के नाम। वो तो सब ठीक है, ना पति का नाम ना आपका नाम, इट्स ओके, आप सुन रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है।

चलिए इंद्रासन, अब तो खुश है ना आप? ये गाना खासकर आपके नाम जो सुयाग से हमें याद कर रहे हैं। दिस इज फॉर यू इंद्रासन, नंद्री वनक्कम।

जी हाँ दोस्तों, मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन इस गाने की फरमाइश की है पूनम मुगन, जो इस वक्त पाई से हमें याद कर रही है। उनके लवली हस्बैंड हैं जिनका नाम है मनीष, और साथ ही साथ है लवली एंजल जिनका नाम है परितुष्टि।

दोस्तों इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया. विल बी मीटिंग वेरी सून. इस गाने के बाद हम बढ़ेंगे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम की ओर. तब तक अभी की ओर से नमस्कार और आदाब.

0: शुक्रवार 3 जुलाई को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म सनम बेवफा 1991 की ये मूवी चांदनी और सलमान खान पर फिल्माई गई सनम बेवफा। एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: माय नेम अमर।
2: माय नेम
1: हो गया ना तेरा इंट्रोडक्शन। चल चल निकल।
2: जाती हूँ तेरी तरह फालतू नहीं हूँ।
3: एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच।
0: शनिवार 4 जुलाई को एमबीसी 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म अंगारे अक्षय कुमार और नागार्जुन पर फिल्माई गई 1998 की ये मूवी अंगारे।
3: तो

0: के धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: भोजपुरी तड़का में आज की रात आप सबको के बहुत बहुत स्वागत बा। किरण के प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कर रहा। आज बीफे के रात्रि हा, जुलाई के दूसरा तारीख और जुलाई महीना के पहला बीफे। आप सब कोई खातिर ये दिन बहुत शुभ रहल। ऐसा शुभकामना के साथ ये रात्रि वेला के शुरुआत करब जा। ये आशा करत है कि मौसम में जो परिवर्तन हुआ था ओकर ढेर खराब असर आप पर नहीं पड़ा था और मौसम के जो इशारा बा चाहे औसने खाना पीना और ओढ़े पहने के। पहला गीत आप सबको के नाम

0: का किरण संगे
1: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.

आज 2 जुलाई के ढेर कोई के घर में खुशियाली के मौसम छैले बा, कहूं पर शादी ब्याह के समा बंधल बा, कहूं पर गीत गवाई होता, कहूं पर शादी के तैयारी चलता, तो दूसर बगल जन्मदिन के उत्सव, जन्मदिन के खुशी मनावल जाता। और ललिता जी अभी तयोली से टेलीफोन करलन और आप बोला था वह कि आपके नातिन आयुषी के आज जन्मदिन बा और पूरा परिवार मिल के आयुषी के बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना प्रकट कर रहा था वजह। और ई में आयुषी के तीन गोदादी, उनकर नानी नाना, मौसा मौसी लोग, सब चाचा लोग, खास तौर पर चाचा लोग के नाम आप ले ले हवा। इनकर में हवन विराज, रणधीर और नीरज, और उनकर सब कुजै कुजिन, भाई बहन सब के ओर से आयुषी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। साथ में ललिता जी बोला था वन कि आज उनकर छोटी दीदी के भी जन्मदिन बा, तो छोटी दीदी आपके जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामना। और आज 2 जुलाई के जितना कोई के भी जन्मदिन बा, आप सब कोई के हमने के ओर से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। और एक बाद जो घर में शादी ब्याह के समा बंधल बा, आप लोग खातिर भी फरमाइश आलबा, थोड़ा घरी में वो भी सुरब जा।

हैप्पी बर्थडे के साथ साथ जैसे शुरू में बोली ढेर घर में ढेर परिवार में शादी ब्याह के मौका बाद शादी ब्याह के मौसम चला था आजकल भले ही अभी जो मौसम बा वो कुछ नासाज बा मौसम के वजह से ढेर कोई के सर्दी जुखाम खांसी ये सब हुआ था लेकिन जब घर में एगो काज रहेला तो सबके परेला खुशी खुशी होकर मैं भाग लेवे के और ये बात के खास ख्याल रखे के कि आपके स्वास्थ्य अच्छा रही स्वास्थ्य रही तो जहान रही और अगला गीत खास तौर पर फोंजुसा के उमा जी के ओर से उमा जी बोला था वन कि आवत दिमास के उनकर नातिन के शादी बा और इसने ही ढेर कोई के घर अंगना में शादी के जो सुर बा शादी के जो ताल बा वो गूंजे लगल बा आप सब कोई के ये बड़ा अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना आप सब कोई के घर में खुशी के माहौल पारिवारिक माहौल ऐसने छैले रही सगे संबंधी के प्यार और हित मित्र के जो अपनापन बा आपके जीवन में हमेशा बनल रही और ख़ास तौर पर दुल्हा दुल्हन के बीच जो प्यार अभी बा वो पूरा जीवन चलते रही

खाली आज ही नहीं बल्कि आजकल के जो समा बंधल बा वो बहुत ही उत्साह होला समा बंधल बा, बहुत खुशी बहुत चाह, जहाँ पर एक तरफ वर्ल्ड कप के जो जुनून बा उछागल बा, रातों रात रात भर रात रात के जग जग के सबको इंतज़ार करता कि कर जीत होई, और जैसे आपके टीम के जीत हुआ था तो घर में घर के साथ साथ फेसबुक पर और पूरा देश ही नहीं बोलो जब पूरा दुनिया में एगो बहुत ही सुंदर माहौल छागल बा। वर्ल्ड कप के यही मकसद है कि जितना राष्ट्र बा, जितना देश बा, जितना जनता बा, सब कोई के इकट्ठा करल जाए, सब कोई एक ही दिशा में सोचन जा जीत के, वो चाहे किकर भी जीत रही। और फुटबॉल जैसन खेल में बोलल जाला कि जो उत्तम श्रेणी के कला खिलाड़ी बा चाहे ओकरे जीत होए के, तो ई भी वर्ल्ड कप में जे सबसे बढ़िया खेली ओकरे जीत होई, ई बात के आश्वासन हमी सब कोई के बा। अब जहाँ शादी के बात चलल, जहाँ पर जन्मदिन के बात चलता, तो खुशहाली के मौका दिखते जहाँ हर जगह छैले बा। सेजिया मिल से चाची शांता सुकारी बोलत हवन कि उनकर भी नातिन के जन्मदिन बा आज, और आप अपन नातिन के नाम एगो सुंदर गीत सुनने चाहत हवा, और आपके पसंद के गीत ज़रूर चली। आप सुनने चाहत हवा लीलो माथुर की आवाज़ में जन्मदिन मनावा, बरिस में एक दिन आवेला, तो आपके साथ साथ एक बार फिर जितना कोई के भी जन्मदिन बा, खाली आज ही नहीं जेकर जन्मदिन काल रहल, हमने के मुलाकात अभी आवत लेंदी के होई, तो अभी से लेंदी तक जेकर भी जन्मदिन बा सप्ताहांत के दौरान, आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और चाची शांता बोलत हवन कि उनकर नातिन के जन्मदिन के शुभकामना उनकर पूरा परिवार देवत हवन जा, नातिन के उनकर माता पिता, पिता के नाम है रवीन, माँ के नाम है किरण, और उनकर चचा लोग के ओर से चचा लोग हवन जा सुदेश, सुजीत, अशोक, आप सब कोई के जन्मदिन के बधाई आपके भतीजी के नाम। तो चला भतीजी के साथ साथ जितना कोई भी जन्मदिन मनावत है वजह एक बार फिर बहुत बहुत बधाई।

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: बदतमीज, ये खूबसूरत खिताब किसने दिया हमें?
2: ए मिस्टर, ये आशिकी के चौचले कहीं और जाके आजमाना।
3: बेटी जब जवान हो जाए तो उसे बड़ों से पूछे बिना घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए।
4: फतेह खान की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए बगैर हम दम नहीं लेंगे।
5: नजर मिल गई तो
0: शुक्रवार 3 जुलाई को NBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म सनम बेवफा 1991 की ये मूवी चांदनी और सलमान खान पर फिल्माई गई सनम बेवफा।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे. अग्राजन गीत बा आप सबको के मन पसंद विश्व विख्यात गीत रंभाराम दोहल के आवाज़ में जुबेदा लुतुले की जाए और ये गीत सुने के चाह रखा था वन वाकवा से भाई अबू और भाई अबू ये गीत अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस काला चोटी और उनकर दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम करा था वन.

ई बकायत आप सुना था हमारा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आपके मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी दड़का, जो उनकी हर रात के चलेला 9 से 11 बजे के बीच दो घंटा के ई सफ़र, नाम के दो घंटा है लेकिन बहुत एगो छोटा सफ़र है, और देखते देखते आधा जो सफ़र बा हमने के पूरा हो गल, 10:02 हो बा। और जब खुशी के घड़ी रहेला तो वक्त कितना जल्दी जल्दी समाप्त हो जाला एकर अंदाज़ा नहीं बुझाला, और जब दुख के वक्त रहेला तब बुझाला कि उस समय कटते नहीं बा। लेकिन भोजपुरी तड़का एगो ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आपके फरमाइश के गीत चलेला एक के बाद एक, और आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेज सबके आधार पर हमनी के जो प्लेलिस्ट पहले से बनल बा वो फिर से बदल ले जाला। और अगला जो गीत चली धरिला चरनिया तोहार सुनीता ननकू के आवाज़ में, ई गीत के फरमाइश बहुत आवेला और आज शीला जी ई गीत के फरमाइश करत हवन अपन पूरा परिवार के नाम, सब लड़का लोग के नाम, अपन पति के नाम, सब परिवार के जोन सदस्य हवन जा। और आप यही शुभकामना करत हवा कि इस परिवार के हर एगो सदस्य पर अम्बे माँ के आशीर्वाद हमेशा बनल रही।

बा। और अगला गीत एगो बहुत ही मजाकिया गीत है जो ननद और भौजाई के बीच होवेला। ननद मोरे सोने की चिड़ैया ये गीत सुने चाहत हवन ग्रैंड ग्रुप से। सुनीता जी, आप अपन बहिन विमला के नाम ये गीत करत हव जे कोंगोमा से हमने के सुनत हवन और हमेशा सुनेलन। और ये गीत के फरमाए

रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के टीम खातिर और जितना कोई भी जितना ननद और जितना भौजाई अभी हमने के सुना था वजह आप सब कोई के नाम ई सुंदर गीत

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: हेलो,
3: अबे तू फिर आ गया कबाब में हड्डी?
2: मैं हड्डी नहीं हूँ, हड्डा हूँ, अपने डैडी का डड्डा हूँ, डिवोर्स कराने का अड्डा हूँ।
3: एक बहुत बड़ा खड्डा है तू।
4: पल तो पल का ये सफर, पल तो पल का साथ।
0: रविवार 5 जुलाई को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म हद कर दी आपने 2000 के साल की ये मूवी गोविंदा और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई हद कर दी आपने।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे. भोजपुरी तड़का ई प्रोग्राम के समाप्त हुए में हमनी के संगे खाली अब 40 मिनट बचल बा और 40 मिनट में 5-6 गीत तक चलबे करी. अगला जो गीत चली ये गीत सुनीता ननकू के आवाज़ में चमेली चमेली तो के हम घुमा देब. ये गीत सुने चाहत हवन अमृता गणेश पितों से. और अमृता जी पूरा गणेश परिवार के साथ साथ सोनिया परी और ये लोग के माता पिता विशान और मीनाक्षी के नाम करत हवन.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना.
2: कुछ कुछ होता है,
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे.
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
5: तुम पास आए
1: रविवार 5 जुलाई को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुछ कुछ

0: रात के 10:41 हो गल बा, मतलब कि 11 बजे में लगभग 20 मिनट से कम ही समय बा। और आप लोग साथ देवत हवा जा ई बखत तक 9 बजे से आपके फ़ोन कॉल्स आई के शुरू हो जाला, वो भी भारी संख्या में आपके फ़ोन कॉल्स खातिर, आपके मैसेज खातिर, आपके प्यार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दिलचस्पी के साथ आप ये प्रोग्राम सुनेला वो सच में काबिले तारीफ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसन जब श्रोता रही तभी सकी ऐसन महफिल जमे, और ये खातिर आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आज के ये प्रोग्राम में अभी 3-4 गो गीत और चली, और हम आपसे एकरे संगे विदा चाहब, हमके आज्ञा द। हमने के भेंट फिर से होई भोजपुरी तरका में आवत लेंदी के, और नहीं तो हमने के मुलाकात हुई भी करेला हर फजर के हमारी धरोहर में 8:50 पर। तकाल फजर के फिर मिलब जा हमारी धरोहर में, और नहीं तो ये प्रोग्राम में मिलब जा आवत लेंदी के। ये रात्रि आप सबको खातिर बहुत शुभ रही, बहुत ही खुशियों भरा रही, उत्साह भरा रही। और वर्ल्ड कप देखे जात हुई बा तो बहुत बहुत शुभकामना, जो टीम के सपोर्ट करत हवा वही टीम जीती ऐसा हमार शुभकामना बा। और चलते चलते आप सब कोई के शुभरात्रि बोलते जाए, अच्छा नींद सुता, अच्छा सपना देखा, अच्छा विचार संगे जितना आप सुते जाए बा, तो आपके जो नवा दिन के शुरुआत हुई वो भी अच्छा अच्छा बीती। बुलल जला हर एगो सुबह एगो नवा जीवन है, तो आज के जो दिन रह जे भारी भी होई तो वो समाप्त हो गल, काल के दिन एगो नया मौका रही, एगो नया जिंदगी रही। आप सब कोई खातिर बहुत शुभ रही, ऐसा शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब। धन्यवाद, नमस्ते।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Seven days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
5: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे.

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: माय नेम अमर।
2: माय नेम
1: नाइस मीटिंग यू।
3: हो गया ना तेरा इंट्रोडक्शन, चल चल निकल।
2: जाती हूँ तेरी तरह फालतू नहीं हूँ।
4: एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच।
0: शनिवार 4 जुलाई को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म अंगारे अक्षय कुमार और नागार्जुन पर फिल्माई गई 1998 की ये मूवी अंगारे।
4: तो

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
1: से लौट के आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पुराने गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं होते हैं, ये तो एक एहसास होता है और इनमें मोहब्बत है, दोस्ती है और उम्मीद भी है और ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीने का अंदाज भी है। आज के इस प्रोग्राम में हर गीत के साथ हम लेकर चलेंगे आपको उन दिनों में जब कैसेट रिवाइंड होती थी, रेडियो का इंतज़ार होता था और हर गाना दिल से सुना जाता था। तो शुरू करते हैं यादों का ये खूबसूरत सा सफ़र सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आपके इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल की निशा के साथ।

0: धीरे चलना।
1: वैसे दोस्तों, अगर दिल कभी उदास होना तो पुराने बॉलीवुड के गीत उसका सबसे खूबसूरत इलाज होते हैं। इन सुरों में एक अजीब सी ताकत होती है जो मुस्कान भी लाती है और आँखों को जरा नम भी कर देती है। इसलिए तो हम आज सिर्फ गाने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने आए हैं। तो चलिए हर नगमे के साथ एक नई याद और एक नई मुस्कान बांट देते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

एक जमाना था जब शाम होते ही पूरा परिवार रेडियो के पास बैठ जाते थे। हर गीत का इंतजार होता था और हर सुर एक नई खुशी लेकर आता था। आज वही एहसास हम फिर से जिंदा करने आ गए हैं। अगर आप अभी उन दिनों को याद करते हैं तो ये प्रोग्राम सिर्फ आप ही के लिए है मेरी जान। तो आइए पुराने बॉलीवुड के अनमोल गीतों के साथ वक्त को

जिंदगी बदल जाती है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ गीत कभी नहीं बदलते। वो आज भी उतनी ही शिद्दत से दिल को छू जाते हैं और जितना पहली बार सुनते वक्त छुआ था। आज हम उन्हीं सदाबहार नगमों का खजाना लेकर आए हैं, तो बस रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और हर गीत को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए।

दोस्तों यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं, हम हमेशा इस बात पे कायम रहते हैं क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती और ना ही वो गीत जो उन यादों को जिंदा रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर नगमे जो हर जनरेशन के दिल के करीब है, चाहे आप उन्हें पहली बार सुन रहे हो या सौवीं बार। यकीन मानिए हर बार ये गीत एक नया एहसास दे जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस संगीत भरे सफर का हर पल आप दिल से एंजॉय कीजिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: दिल से हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारा साथ दे रहे हैं। हो सकता है कि फिलहाल आप घर पे आराम फरमा रहे हो, तो दैट्स वेरी गुड। आराम फरमाते फरमाते खूबसूरत गीतों का आप मजा तो ले ही रहे हो, और हो सकता है कि अभी आप काम पे हो, तो कुआश टू यू। और हो सकता है कि ड्राइव कर रहे हो, सो ड्राइव केयरफुली। और ड्राइव करते करते चलिए ये नगमा खासकर आपके नाम ऑन रेडियो मॉरीशस इन योर सुनहरे पल।
1: मोहब्बत का नगमा

0: मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता।
1: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए गिनीशा को इजाजत दीजिए, जाने का समय हो गया है, लेकिन लौट कर वापस आएंगे फिर से सुनहरे पल के एक और खूबसूरत से शो में। शुभ रात्रि, शब बखैर।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्ही ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा।